नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ आपकी आवाज़ में सिर्फ और सिर्फ वागड़ रेडियो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 7 मई 2026 वार गुरुवार का दिन है, साथ ही साथ यूँ हम देख पा रहे हैं कि स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बज चुके हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोता साथियों, आज सभा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी से। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। अगला कार्यक्रम होगा इसी कड़ी में सच्चा बचपन। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर और इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोता साथियों, इसी के बाद हम रूबरू होंगे कार्यक्रम आपकी और हमारी आवाज़ यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज़, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर के साथ में। फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे अधिकार कानून नियमों से जुड़ा सच्चा स्वराज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और अंजलि पारशर। इसी क्रम में श्रोता साथियों, आगे बढ़ते हुए हम रुख करेंगे हमारी परंपराओं लोक राजस्थानी गीतों से जुड़ा कार्यक्रम लोक संगीत, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8:30 पर राजस्थानी गीतों के साथ में। श्रोता साथियों, फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मेरे साथ में यानी कि आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल के साथ में और मेरे साथ होगी हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर। आगे बढ़ते हुए हम सुन पाएंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर। श्रोता साथियों, फिर हम रूबरू होंगे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से, इसे लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 10:00 बजे। फिर इसी क्रम में हम रुक करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों, आप अपने फरमाइश के गीतों को सुन सकते हैं 11 से 1 बजे तक वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और फरमाइश के गीतों को दे सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, यह तो थी हमारी आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज की सभा में सबसे पहले कार्यक्रम आराधना से।

0: आज के सुविचार।
1: उसके भोजन से फल संग्रहित होता है, क्यों? इसलिए ताकि वृक्ष उसे स्वयं खा सके? नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वो भूखे जीवों में बांट सके। अब आप पूछेंगे कि इसमें वृक्ष का क्या लाभ? लाभ है, क्योंकि जो बांटता है वो मिटता नहीं। जो फल ये जीव खाते हैं वो उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष। उसकी जाति, उसका गुण, उसकी मिठास अमर हो जाती। इसलिए स्मरण रखिएगा, अमीर होने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। राधे राधे। भय, भय सबको होता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य। वास्तविकता में मनुष्य भय को अपने साथ लेके ही जन्म लेता है। तो इस भय से भय कैसा? यदि भय बुरा भाव होता तो क्या इसे हम अपने साथ लेके जन्म लेते हैं? वास्तविकता में भय हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए, जीवन जाने का भय आपसे स्वयं की सुरक्षा करवाने का प्रयास करता है। अपमान का भय सदाचार की ओर बढ़ाता है। किसी प्रिय को खो देने का भय उसके लिए कर्तव्य पालन करने को प्रेरित करता है। किंतु यह भय बुरा तब हो जाता है जब आप इसे अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं, इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर पाते। इसलिए यदि इस भय को उपयोग में लाना, आपको स्वयं इस भय के ऊपर हावी हो जाना होगा। तो तोड़ दीजिए भय की सीमाएं, अपनी आत्मा को छोड़ के किसी और के समक्ष सर मत झुकाइए। और स्मरण रखिए, जब अंधकार से डरना छोड़ दोगे तभी दीपक बनकर प्रकाश दे पाओगे। राधे राधे।
0: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपणा ने खावाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े, सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
4: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपे करने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है, पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरो ने हाथे मली में जावो है, फार्म भरो, जानकारी लो, जमी माते नाम लकड़वो काटो नती, जैवरे अधिकार हंग्रा अपनावे, जानकारी सबनु हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
3: होवे भाइयों ने बहनों, हक जानो, हक मांगो, जमीन का कागज माते अपनु नाम लकाड़ो।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
6: नाना अंजलि बोन, हूँ था का?
5: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिये हैं ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थई जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
6: ओ अंजलि बोन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
5: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
6: होवे अंजलि पुन, आपरे भाई बहन थकी आपरे अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपरो ने आपरी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
5: होवे होवे जागृति पुन, आपरे भाई बहनो ने कह कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपरी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपरी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु स्वागत कर रहा हूँ अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम के भाई बोनो अमे अमारे टीम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक ना विषय ने हाते। तो भाई बोनो आज अमारी कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नु विषय है कि जय वगत हंग्र हाथ एक हाथे मली ने काम करे ही तो हरते अपनी जे फसल है ई असल थाय है। तो आना विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी आप तक घना कनी बातें थायेगा पण कार्यक्रम शुरू कर एने पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे कर अपनी बातें। तो भाई बोनो आप हमारे रहो आपू रेडियो अपनी बातें वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: पूरे समाज की होती है।
1: बिल्कुल।
0: अगर हम जब देखें कि सावन का महीना आता है, वैसे ही वागड़ की धरती, पहाड़ियां, इन पर हरियाली की वो एक पूरी चादर ओढ़ लेती है, प्रकृति का पूरा स्वरूप बदल जाता है।
1: जी जी।
0: हमारा राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र जिसे हम वागड़ कहते हैं, जंगलों में सागौन, महुआ, बांस, खाकरा, पलाश की नई पत्तियां और कोमल कोपले झूमने लगती हैं। सूखे पड़े नदी नाले, छोटी नदियां फिर से कलकल कर बहने लगती हैं। खेतों की मेड़ पर उगने वाली घास हमको ये बताती है कि धरती ने फिर एक नए जीवन को, एक विश्वास को, एक मेहनत को और

0: नहीं होती है। खेत में एक साथ कई हाथ काम कर रहे होते हैं, जिसमें पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और कई बार बच्चे भी छोटे छोटे कामों में परिवार का हाथ बटाते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आप हमें कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से ये बता रहे हैं कि सांझे हाथ और सांझी फसल का क्या महत्व है, तो यही अब मैं जानना चाहूंगी कि वागड़ की सबसे बड़ी ताकत क्या है और उसका क्या महत्व है।
0: ऐसे तो हमारे तीज, त्योहार, खेत और गांव, ये हमारे वागड़ की सबसे बड़ी ताकत है। यदि हम देखें हमारी सामूहिकता को, तो ये सामूहिकता या साझापन केवल खेती तक सीमित नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है।
1: बिल्कुल,
0: जहां खुशियां भी साझा है, चुनौतियां भी साझा है और मेहनत भी साझा है।
1: बिल्कुल,
0: इसी साझेपन ने सदियों से हमारे आदिवासी समाज को कठिन परिस्थितियों में भी आत्मनिर्भर बनाए रखा है। अब क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार बहुत करीब आ रहा है, तो हम इसी को लेकर इस चीज को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो किसान साथियों, रक्षाबंधन का अर्थ केवल एक रिश्ता नहीं है। अगस्त का महीना एक और विशेष कारण से महत्वपूर्ण होता है। इस समय जो रक्षाबंधन का पर्व आता है, सामान्य रूप से इसे भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के त्योहार के रूप में देखा जाता है। लेकिन हमारे आदिवासी जीवन दर्शन में सुरक्षा का अर्थ केवल परिवार तक सीमित नहीं है। यहाँ रक्षा का भाव प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है। धरती जो हमारी माँ है, जंगल हमारे संरक्षक हैं और हम जंगलों के संरक्षक हैं। पानी हमारे जीवन का आधार है, तो बीज हमारे आने वाली पीढ़ियों की पूंजी है।
1: बिल्कुल,
0: और खेती हमारे संपूर्ण अस्तित्व का आधार है। इसलिए रक्षाबंधन का जो वास्तविक संदेश है, केवल इंसानों के बीच नहीं बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच भी एक अटूट संबंध जोड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: जिस प्रकार बहन का विश्वास भाई के हाथ पर बांधे जाने वाले धागे पर होता है, उसी तरह किसान बारिश से पहले बीज धरती को सौंपता है और ये विश्वास करता है कि ये मिट्टी, ये प्रकृति उसे कभी निराश नहीं करेगी।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने हमें बताया कि वागड़ क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी ताकत तीज, त्योहार, परंपरा के साथ साथ सामूहिकता भी है और किस तरीके से इनका महत्व है। यही सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आज भी खेतों में मिलकर काम करने की परंपरा को हम देखते हैं, और ये जो जिम्मेदारी है किस तरीके से परिवार की ही नहीं समाज की भी होती है।
0: बिल्कुल किसान साथियों, तो वागड़ की जो खेती है, ये एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि जब खेत किसी का है तो जिम्मेदारी समाज की कैसे हुई, पर यही सबसे बड़ी खासियत है इस वागड़ के भील समुदाय की।
1: बिल्कुल,
0: वागड़ के अधिकांश किसान गांव में खेती केवल अपनी आर्थिक गतिविधि या लाभ के लिए नहीं करते हैं, बल्कि ये एक सामाजिक जीवन का केंद्र है। यहाँ खेतों में काम करते समय शायद ही आपको कोई अकेला दिखाई दे। यदि किसी परिवार में काम करने वाले कम हो, यदि किसी किसान की तबीयत खराब हो जाए, यदि किसी विधवा महिला के खेत की निराई का समय आ जाए, या लगातार बारिश के कारण जल्दी पूरा काम करना जरूरी हो, उस स्थिति में समुदाय खुद आगे आ जाता है।
1: बिल्कुल,
0: उनको कोई बुलावा नहीं भेजा जाता, उनकी कोई मजदूरी तय नहीं होती। समुदाय अपने औजार लेके जरूरतमंद किसान के खेत पे पहुंचकर उस काम को उस समय में पूरा कर देते हैं जिस समय में उस काम को होना चाहिए।
1: जी जी,
0: तो यहीं पे हम देखते हैं वागड़ में जो खेती है वो किसी परिवार की नहीं वरन पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है कि उस किसान के साल भर के अनाज की व्यवस्था होना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो यही अब आपसे मैं जानना चाहूंगी कि वागड़ के आदिवासी गांवों की एक विशेष पहचान क्या है जो सभी को पता होनी चाहिए।
0: बिल्कुल किसान भाइयों, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जहां हम साझेपन की बात कर रहे हैं, तो साझापन वागड़ के

0: भील समुदाय की हर चीज में दिखाई देता है। अगर हम गांव की बात करें तो हमारे गांव की एक विशेष पहचान होती है, हमारा फलिया या पाड़ा। फलिया या पाड़ा की संस्कृति जहां पड़ोसी परिवार से भी बढ़ के होता है। फलिया केवल कुछ घरों का समूह नहीं है, ये एक जीवित सामाजिक व्यवस्था है।
1: बिल्कुल,
0: यहाँ हर परिवार दूसरे परिवार की खुशियों और कठिनाइयों में बराबर का भागीदार होता है। किसी घर में शादी हो, बीमारी हो, खेत में ज्यादा काम हो या बरसात के कारण फसल बचाने की जरूरत हो, चाहे वो फसल खेत में हो या खलिहान में हो, ऐसी जरूरत के समय पे उस फलिया या पाड़ा के लोग बिना बुलावे के उस किसान के साथ खड़े हो जाते हैं। और इसी फलिया संस्कृति ने सामूहिक मेहनत और अपनेपन को जिंदा रखा है।
1: बिल्कुल,
0: आज हम देखते हैं कि आधुनिक जीवन या समय में जहां व्यक्ति अकेला होता जा रहा है, वहीं वागड़ का फलिया या पाड़ा आज भी हमें ये याद दिलाता है कि विकास केवल संसाधनों से नहीं, संबंधों से होता है। तो यही वागड़ के आदिवासी गांव की एक और विशेषता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने वागड़ की विशेषता के बारे में बताया, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि इसमें महिलाएं सामूहिक खेती में क्या क्या भूमिका निभाती हैं।
0: जी किसान भाइयों, तो साझेदारी की सबसे मजबूत कड़ी अगर कोई है तो वो हमारी महिला किसान। यदि हम साझेदारी की आत्मा को देखना चाहते हैं तो वो महिला किसान है।
1: बिल्कुल,
0: जो सुबह घर संभालने से लेकर शाम तक खेतों में काम करना, पशुधन की देखभाल करना, बीजों को बचाना, बच्चों का पोषण सुनिश्चित करना, परिवार की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना,
1: बिल्कुल
0: ये सब एक महिला किसान की दैनिक जिम्मेदारी का या रोज के कामों का हिस्सा है। वो केवल मजदूर नहीं है, वो बीज की भी संरक्षक है।
1: बिल्कुल,
0: वो मिट्टी की पहचान करने वाली एक वैज्ञानिक भी है, वो पशुधन की देखभाल करने वाली प्रबंधक भी है। इस तरह से जो एक पूरा पारिवारिक ताना बाना है, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक की जितनी जरूरतें हैं उन में सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी एक महिला की होती है। तो ये परिवार की पोषण प्रबंधक तो है, और जब हम परिवार की बात करते हैं तो परिवार के सदस्य ही नहीं, उस परिवार में पाले जाने वाले पशुधन भी उस परिवार का हिस्सा होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और सबसे बढ़कर वह सामूहिक सहयोग की सबसे मजबूत आधारशिला होती है। तो इसी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि साझेदारी की जो सबसे मजबूत कड़ी है वो एक महिला है।
1: बिल्कुल, असल जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो किस तरीके से साझेदारी की भूमिका निभाती हैं, और अगर महिलाएं इस साझेदारी में प्रमुख हिस्सा न बने तो हम देखेंगे कि बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अंत में आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथी, हमारे जो किसान भाई बहन है, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि भविष्य में भी यह जो परंपरा है वो ऐसे ही बनी रहे।
0: तो किसान साथियों, अंत में हम संदेश के साथ इसे खत्म करेंगे, पर अगर हम हमारे ताजे संबंधों की बात करें तो ऐसी और बहुत सी चीजें, परंपराएं, संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, जैसे हमारा हलमा धाड़, जो किसी व्यक्तिगत उद्देश्य या लाभ के लिए नहीं किए जाते, ये सब एक साझे प्रयास होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: पूरे समुदाय के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, न कि सिर्फ उस गांव के लिए। तो अंत में किसान साथियों, मैं यही कहूंगा कि आइए इस सावन और रक्षाबंधन पर केवल राखी का धागा ही नहीं, बल्कि हमारे जल, जंगल, जमीन, बीज, बहनों के सम्मान और साझी खेती के संकल्प को भी अपने जीवन से बांधें, क्योंकि यही वागड़ की पहचान है, यही हमारी साझा विरासत है और यही आने वाले कल की सबसे बड़ी आशा है।
1: बिल्कुल सर, तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: आपका, वागड़ रेडियो का और सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार।
1: માઇન બનો જેમ કે આપણે આપણે વેસ્ટ મે મનીષજી જોડે તક હતા ને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા થકી ઘણા કાની વાતે વતાડી હે। આશા કરો હો કે હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ તકી સૂટો પડવાનો। તો સૂટો તો પડો પણ સાથે પહેલે હમરી લે એક ઓર ગીત મોરે પડો સૂટા।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली में जावू है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जय वरे अधिकार हमरा अपनावी जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा बचपन। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर।
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर।
0: स्वीकार कीजिए साथियों हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: जी हां श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन को आज एक नए विषय के साथ में आज हम बच्चों की पढ़ाई से जुड़े एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे कशिश, जो लगभग हर घर की कहानी बन चुका है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे ही स्कूल से बच्चा घर आता है और होमवर्क की बात होती है तो कई घरों में तनाव का माहौल बन जाता है।
1: जी
0: कोई
1: हाँ।
0: बच्चा कहता है कि मुझे होमवर्क नहीं करना, तो कोई रोने लगता है, तो कोई बहाने बनाने लगता है, तो कोई मोबाइल देखने की जिद करने लगता है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में माता पिता भी परेशान हो जाते हैं, कई बार डांट फटकार या गुस्से का सहारा लेने लगते हैं। लेकिन श्रोता साथियों, क्या हमने कभी यह सोचा कि आखिर होमवर्क बच्चों के लिए बोझ क्यों बनता जा रहा है?
1: बिल्कुल,
0: क्या वास्तव में समस्या होमवर्क में है या उसे करने के तरीके में है?
1: जी हाँ।
0: आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: होमवर्क को बोझ नहीं बल्कि सीखने का सुनहरा अवसर कैसे बनाएं?
1: जी हाँ अंजलि जी, तो बातें ढेर सारी होंगी आज के इस कार्यक्रम में, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम गीत सुनवाएं।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय तो आपको बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं साथियों, कि हम बच्चों को बताएं कि होमवर्क बोझ नहीं होता बल्कि सीखने का अवसर होता है। जैसा कि अंजलि जी, गीत से पहले आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोता साथियों को बताई थी।
1: जी जी।
0: कि होमवर्क का उद्देश्य जो है वो बच्चों पर ज्यादा दबाव डालना नहीं होता, बल्कि बच्चों को सीखने का एक नया अवसर ये प्रदान करता है।
1: जी जी।
0: ऐसे में श्रोता साथियों, हमें बच्चों को ये बताना है कि वो होमवर्क को घर पर दोहराएं, समझे और अभ्यास करते रहें, क्योंकि जब बच्चा स्वयं अभ्यास करता है तब उसकी समझ मजबूत होती है अंजलि जी, और वह सीखी हुई बातों को लंबे समय तक याद भी रख पाता है। देखते हैं कि होमवर्क को सही दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथियों, यहाँ पर समस्या तब शुरू होती है जब होमवर्क केवल जिम्मेदारी या दबाव बन जाता है। कई बार बच्चे स्कूल से थके हुए घर लौटते हैं, घर पहुंचते ही उन्हें बिना आराम किए पढ़ने के लिए बिठा दिया जाता है।
1: बिल्कुल।
0: कुछ बच्चों पर तो अंजलि जी बहुत अधिक होमवर्क का दबाव होता है, तो कुछ बच्चों को तो ये पढ़ाई कठिन लगती है। ऐसे में श्रोता साथियों, उनके मन में होमवर्क के प्रति डर और नकारात्मक भावनाएं पैदा हो जाती हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल कशिश, यहाँ पर माता पिता की जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि वे हर समय केवल यह पूछते रहें कि होमवर्क पूरा हुआ या नहीं, इतनी देर क्यों लग रही है या जल्दी करो, तो बच्चा पढ़ाई को आनंद की जगह तनाव से जोड़ने लगता है।
0: बिल्कुल।
1: इसके बजाय माता पिता को यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को किस विषय में कठिनाई आ रही है। उसे डांटने की बजाय समझाना, उसके साथ बैठना और उसका मनोबल बढ़ाना बहुत अधिक प्रभावी होता है।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों, होमवर्क करने के लिए घर में एक शांत और व्यवस्थित वातावरण होना चाहिए। यदि आसपास टीवी चल रही हो, मोबाइल का शोर हो या बार बार व्यवधान आए, तो बच्चों का ध्यान भटकना स्वाभाविक है। इसलिए पढ़ाई के समय ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहाँ बच्चा एकाग्र होकर अपना कार्य पूरा कर सके। हमें बच्चों को यह भी सिखाना चाहिए कशिश, कि होमवर्क केवल कॉपी भरने का नाम नहीं है। यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आता तो उसे पूछना चाहिए। यदि कोई नया शब्द मिलता है तो उसका अर्थ जानने का प्रयास करना चाहिए। यदि किसी विषय में रुचि जगानी है तो उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी भी खोजनी चाहिए।
0: जी जी।
1: यही आदत बच्चों में जिज्ञासा और सीखने का आनंद विकसित करती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी। साथ ही श्रोता साथियों, आज के समय में जैसा कि तुलना भी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा दबाव बन गई है। कई माता पिता को हमने कहते हुए सुना है अंजलि जी, कि वे कहते हैं कि देखो, तुम्हारा दोस्त तो अपना होमवर्क पहले से ही पूरा कर लेता है। साथियों, ऐसी बातें बच्चों का आत्मविश्वास कम करती है। हर बच्चे की सीखने की गति अलग होती है, इसलिए तुलना करने के बजाय उसकी अपनी प्रगति की सराहना आपको करनी चाहिए।
1: जी हाँ।
0: साथ ही इसमें शिक्षकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है अंजलि जी, यानी कि यदि शिक्षक होमवर्क का उद्देश्य बच्चों को समझाएं, उनकी समय समय पर समीक्षा करते रहें और बच्चों के प्रयासों की सराहना करेंगे तो बच्चे उसे और अधिक रुचि से करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, केवल गलतियां निकालने के बजाय सही प्रयासों की प्रशंसा करना भी जरूरी होता है। साथ ही होमवर्क को रोचक बनाने के लिए पढ़ाई के बीच बीच छोटे छोटे विराम भी दिए जा सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: कठिन विषय पहले और आसान विषय बाद में करने की योजना बनाई जा सकती है। समय का सही प्रबंधन बच्चों को तनाव से बचाता है और पढ़ाई को और भी आसान बनाता है अंजलि जी।
1: बिल्कुल कशिश, तो इस तरीके से कार्यक्रम में आज हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान रहे हैं कि होमवर्क को हमें बोझ नहीं समझना है बल्कि सीखने का अवसर बनाने की जरूरत है। तो ये बातें निरंतर आगे और भी कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों के साथ बनी रहेंगी
0: जी।
1: लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले कशिश हमने ढेर सारी बातों को जाना ही कि किस तरीके से बच्चों के होमवर्क को हमें रोचक बनाना है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को पूरा दिन केवल पढ़ाई में ही नहीं बिताने देना चाहिए। उन्हें खेलने, परिवार के साथ समय बिताने, कहानी पढ़ने, अपनी रुचियों को पूरा करने का अवसर भी मिलना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: संतुलित दिनचर्या वाला बच्चा होमवर्क को अधिक उत्साह से करता है।
1: बिल्कुल।
0: हमें बच्चों को ये समझाना चाहिए कि होमवर्क केवल शिक्षक को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने के लिए हर दिन किया गया छोटा सा अभ्यास भविष्य में बड़े आत्मविश्वास और सफलता का आधार बनता है।
1: बिल्कुल।
0: जब बच्चा यह समझ लेता है कि पढ़ाई उसकी अपनी प्रगति के लिए है, तब वह होमवर्क को बोझ नहीं बल्कि सीखने का अवसर मानने लगता है।
1: जी जी।
0: इसलिए कहा जा सकता है श्रोता साथियों कि होमवर्क को लेकर बच्चों और माता पिता दोनों की सोच बदलने की आवश्यकता है। यदि घर में सहयोग, प्रोत्साहन, धैर्य और सकारात्मक माहौल होगा तो बच्चा पढ़ाई से नहीं भागेगा बल्कि सीखने में आनंद महसूस करेगा। यही आनंद उसे जीवन भर सीखते रहने की प्रेरणा देगा और शिक्षा को केवल अंकों तक सीमित नहीं रहने देगा।
1: साथ ही हम अंजलि जी अपने बच्चों को ये भी बताएं कि होमवर्क का वास्तविक उद्देश्य केवल कॉपी के पन्ने भरना या अगले दिन शिक्षक को दिखाना नहीं है। यह बच्चों को आत्मनिर्भर बनने, नियमित अभ्यास करने, समय का महत्व समझने और अपने सीख को मजबूत करने का अवसर देता है।
0: बिल्कुल।
1: यदि बच्चे ये समझ जाएंगे साथियों कि होमवर्क उनके विकास का एक साधन है न कि सजा का, तो पढ़ाई के प्रति उनका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल सकता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए जरूरत होमवर्क को खत्म करने की नहीं बल्कि उसे देखने और कराने के तरीकों को बदलने की है। अंजलि जी।
0: जी हाँ, यही श्रोता साथियों, अक्सर हम बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि वे हर काम पूरी तरह सही करें, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में गलतियाँ होना स्वाभाविक है। यदि बच्चा किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है या होमवर्क में गलती करता है कशिश, तो उसे डांटने के बजाय समझने, सुधारने का अवसर देना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: जब बच्चों को यह विश्वास मिलता है कि गलती करने पर उनका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा बल्कि उन्हें सही दिशा दिखाई जाएगी, तब वे बिना डर के सीखने का प्रयास करते हैं और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
1: बिल्कुल।
0: यह भी याद रखना चाहिए श्रोता साथियों कि हर बच्चा अलग होता है। कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे धीरे समझता है, तो कोई लिखने में अच्छा होता है, तो कोई बोलकर अपनी बात बेहतर तरीके से व्यक्त करता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए बच्चों की तुलना करने की बजाय उनकी व्यक्तिगत क्षमता और सीखने की गति का सम्मान करना आवश्यक है। जब बच्चा अपने प्रयासों की सराहना महसूस करता है, तब वह पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि अपनी प्रगति का माध्यम मानता है।
1: जी हाँ अंजलि जी। साथी दोस्तों, माता पिता, शिक्षक यदि मिलकर बच्चों के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करेंगे जहाँ जिज्ञासा को प्रोत्साहन मिले, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता हो, प्रयासों की सराहना हो और सीखने को अंकों से अधिक महत्व दिया जाए,
0: जी जी,
1: तो अंजलि जी शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा। होमवर्क तब केवल किताबों तक सीमित नहीं रहेगा साथियों, बल्कि बच्चों में अनुशासन, जिम्मेदारी, धैर्य, आत्मविश्वास के साथ साथ समस्या का समाधान खोजने जैसी जीवन भर काम आने वाली क्षमताओं का भी विकास करेगा।
0: जी हाँ।
1: ऐसे में हम अपने बच्चों को यह एहसास दिलाएं कि पढ़ाई किसी प्रतियोगिता में दूसरों को हराने के लिए नहीं है बल्कि स्वयं को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने के लिए है। जब घर का माहौल सहयोग, विश्वास और प्रोत्साहन से भरा होगा, तब बच्चे बिना किसी डर के नई बातें सीखने का साहस करेंगे।
0: जी हाँ।
1: वे केवल अंजलि जी अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थी नहीं बनेंगे बल्कि समझदार, जिज्ञासु और आत्मनिर्भर सीखने वाले भी बनेंगे।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हमारे श्रोता साथियों को हम कार्यक्रम के अंत में यही कहना चाहेंगे कि होमवर्क का असली महत्व उसकी मात्रा में नहीं बल्कि उससे मिलने वाली सीख में छिपा होता है। यदि हम बच्चों को यह समझा दें कि हर अभ्यास उन्हें अपने सपनों के एक कदम और करीब ले जाता है, तो वे किताबों को बोझ नहीं बल्कि अपनी भविष्य का साथी मानेंगे।
1: बिल्कुल।
0: ऐसा बचपन केवल परीक्षा में ही नहीं बल्कि जीवन की हर चुनौती में धैर्य, समझ और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। यही सीखने की सबसे बड़ी सफलता है और यही सच्चे बचपन की सबसे सुंदर पहचान भी है।
1: जी हाँ अंजलि जी। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं, और अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल।
1: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे साथियों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ।
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेषर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेषर को।
1: नमस्कार।

0: भाई न बोनो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज को। साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर,
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
0: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। जैसा कि श्रोता साथियों, हम जब भी कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो आपसे बातचीत का एक नया विषय हमारे साथ बना रहता है। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसे ही विषय को लेकर हम बात कर रहे हैं। जागृति जी, आज हम जिस विषय को लेकर बात करने वाले हैं हमारे युवा साथियों से, वो सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि विद्यार्थी, परिवार और हर समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण विषय है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, बातचीत का विषय है दृष्टि से ज्यादा कहीं अहम है दूरदृष्टि।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आंखें केवल वर्तमान को देखती है लेकिन दूरदृष्टि भविष्य को गढ़ती है। तो आज हम जरूर बात करेंगे दृष्टि से ज्यादा कहीं अहम है दूरदृष्टि को लेकर, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं यह गीत।
0: जी बिल्कुल, तो श्रोता साथियों आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं, दृष्टि से ज्यादा अहम है दूरदृष्टि। जैसा कि हमारे पास आंखें हैं जागृति जी, इसलिए हम अपने सामने की चीजों को देख सकते हैं, लेकिन क्या केवल देख लेना ही पर्याप्त है श्रोता साथियों?
1: बिल्कुल।
0: क्या जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ वर्तमान को देखना काफी होता है क्या? इसका उत्तर है शायद नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल दृष्टि ही नहीं बल्कि दूरदृष्टि भी जरूरी होती है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि दृष्टि हमें जागृति जी वर्तमान का दृश्य दिखाती है, लेकिन जो दूरदृष्टि होती है वो हमें भविष्य की दिशा दिखाती है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि जीवन में हर निर्णय का प्रभाव भविष्य पर पड़ता है। अगर हम केवल आज के लाभ को देखकर निर्णय ले लें तो भविष्य में कठिनाइयां आ सकती है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अगर हम दूरदृष्टि से निर्णय लें तो वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी सुरक्षित हो जाता है। श्रोता साथ, दूरदृष्टि व्यक्ति को समय का सही उपयोग करना सिखाती है, संभावित संकटों के लिए तैयार रहती है, अवसरों की पहचान कराती है, नेतृत्व क्षमता विकसित करती है, साथ ही समाज और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देने योग्य बनाती है।
0: बिल्कुल।
1: हम कह सकते हैं कशिश कि इतिहास ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां दूरदृष्टि ने राष्ट्रों और समाजों का भविष्य बदल दिया।
0: बिल्कुल।
1: महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्र भारत का सपना केवल अंग्रेजों से आजादी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आत्मनिर्भर, नैतिक और स्वावलंबी भारत की कल्पना की। उनका सच्चा स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता का संदेश था।
0: बिल्कुल।
1: हम बात करें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने वर्षों पहले विकसित भारत का सपना देखा था। उन्होंने युवाओं से कहा कि बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करो। उनकी दूरदृष्टि आज भी करोड़ों युवाओं को प्रेरित करती है।
0: जी हाँ जागृति जी, हम कह सकते हैं कि दृष्टि हमें बताती है कि आज हमारे सामने क्या है, लेकिन दूरदृष्टि ये समझाती है कि आज का निर्णय आने वाले वर्षों में हमारे जीवन को किस दिशा में लेकर जाएगा। जैसा कि युवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर होता है और इसी समय लिए गए निर्णय भविष्य की नींव बनते हैं।
1: जी हाँ।
0: ऐसे में यदि कोई युवा केवल आज की मौज मस्ती, तत्कालिक सफलता और दूसरों की तुलना करने में लगा रहे तो वह भविष्य के बड़े अवसर खो देगा।
1: बिल्कुल।
0: वहीं जो युवा दूरदृष्टि रखते हैं वह अपने हर छोटे कदम को बड़े लक्ष्य से जोड़कर देखते हैं। जागृति जी,
1: जी हाँ,
0: आज के समय में हम अक्सर सोशल मीडिया पर लोगों की सफलता को देखते हैं और सोचते हैं कि हमें तुरंत सफलता क्यों नहीं मिल जाती। लेकिन दोस्तों, हम ये नहीं देखते कि उस सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत है, धैर्य है और योजना होती है। ऐसे में दूरदृष्टि हमें सिखाती है कि बड़ी उपलब्धियां एक दिन में नहीं मिलेगी बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे सही प्रयासों से ही बनेगी।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन में दूरदृष्टि का बहुत महत्व होता है। हर व्यक्ति के जीवन में हम देखें कि दूरदृष्टि बहुत जरूरी है।
0: जी जी।
1: अगर विद्यार्थी की बात करें तो अगर केवल परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उसकी सोच सीमित रहती है, लेकिन अगर वो अपने ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व विकास पर ध्यान देते हैं तो उसका भविष्य और अधिक उज्जवल बनता है।
0: जी हाँ।
1: इसी के साथ हम बात करें किसान की, तो अगर केवल इस मौसम की फसल के बारे में सोचता है किसान तो वो सीमित लाभ प्राप्त करेगा, लेकिन अगर वो जल संरक्षण, आधुनिक खेती और मिट्टी की उर्वरता पर ध्यान देगा तो आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित कर सकता है।
0: बिल्कुल।
1: इसी प्रकार श्रोता साथियों, परिवार, व्यवसाय, शिक्षा और स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में दूरदृष्टि सफलता की कुंजी है।
0: बिल्कुल।
1: भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। अगर युवा केवल वर्तमान की सुविधाओं में उलझ जाए कशिश, तो देश का भविष्य भी प्रभावित होता है।
0: जी
1: हाँ। इसलिए हमारे युवा साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि दोस्तों, नई तकनीकों को आप जरूर सीखें, कौशल विकास पर ध्यान दीजिए, केवल नौकरी खोजने के बजाय अवसरों का निर्माण करिए।
0: बिल्कुल।
1: पर्यावरण संरक्षण को अपनाइए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, साथ ही समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी को निभाइए।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि आज जो युवा दूरदृष्टि के साथ मेहनत करेगा वही कल समाज का नेतृत्व करेगा।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों से बातचीत का विषय हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है और हम बात कर रहे हैं कि दृष्टि से ज्यादा कई अहम होती है दूरदृष्टि।
1: बिल्कुल।
0: तो दूरदृष्टि के महत्व को हम जान ही रहे हैं, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना साथियों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दे हम।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। हमारी बातें चल रही थी दृष्टि से ज्यादा कहीं अहम है दूरदृष्टि को लेकर। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जाना दृष्टि और दूरदृष्टि के अर्थ के बारे में, दूरदृष्टि क्यों जरूरी है, साथ ही इतिहास में दूरदृष्टि के क्या क्या उदाहरण है, व्यक्तिगत जीवन में दूरदृष्टि का क्या महत्व है और हम युवाओं के लिए दूरदृष्टि का क्या महत्व, ये भी हम जान रहे थे। यही जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण और दूरदृष्टि का क्या महत्व है।
1: जी हाँ।
0: तो कशिश, अगर हमारे पूर्वजों ने पेड़ नहीं लगाए होते तो आज हमें शुद्ध हवा भी नहीं मिल रही होती। आज यदि हम जल संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां पानी की गंभीर समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, दूरदृष्टि हमें यही सिखाती है कि प्रकृति केवल हमारे लिए नहीं है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की भी धरोहर है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए हमें आज से ही, अगर हमने पहले से नहीं किया हो तो हम आज से भी वर्षा जल संचयन कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं, प्लास्टिक का कम उपयोग करें, साथ ही ऊर्जा की बचत करें। ये कार्य अगर हम करेंगे तो ये कार्य दूरदृष्टि का परिचय है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हमारे युवा साथियों को हम ये भी बताना चाहेंगे कि साथियों, दूरदृष्टि का मतलब ये भी नहीं है कि हम केवल भविष्य की चिंता करते रहें और वर्तमान को भूल जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आज को इस तरह जीना

0: है कि आने वाला कल बेहतर बन सके।
1: बिल्कुल,
0: वर्तमान में पूरी मेहनत करना, भविष्य को ध्यान में रखकर सही दिशा चुनना साथियों, यही सच्ची दूरदृष्टि है। आज हम देखते हैं कि युवाओं के सामने ढेर सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि प्रतिस्पर्धा, मानसिक दबाव, सोशल मीडिया का प्रभाव और समय की कमी। जागृति जी,
1: बिल्कुल,
0: इन सबके बीच वही युवा आगे बढ़ेंगे जो हर परिस्थिति में धैर्य रखेंगे, सीखते रहेंगे और जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय सोच समझकर कदम उठाएंगे। क्योंकि साथियों, जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जहां आसान रास्ता तुरंत लाभ देता हुआ हमें दिखाई देता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन वही रास्ता आगे चलकर श्रोता साथियों नुकसान भी पहुंचा सकता है। वहीं दूसरी ओर कठिन रास्ता शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन भविष्य में वही स्थायी सफलता देता है। इसलिए श्रोता साथियों, दूरदृष्टि हमें सही रास्ता चुनने की समझ देती है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि एक अच्छा नेता केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान नहीं करता, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का भी अनुमान लगाता है।
0: बिल्कुल,
1: चाहे कोई विद्यालय का प्रधानाचार्य हो, ग्राम पंचायत का सरपंच हो, किसी संस्था का प्रमुख हो या देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति।
0: जी हाँ,
1: दूरदृष्टि के बिना प्रभावी नेतृत्व संभव नहीं है। श्रोता साथियों, दूरदृष्टि वाला नेता निर्णय लेते समय केवल आज नहीं देखता, बल्कि आने वाले वर्षों का भी ध्यान रखता है। आज हम देख रहे हैं कशिश की कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको हम AI कहते हैं, डिजिटल तकनीक, रोबोटिक्स और इंटरनेट ने पूरी दुनिया को बदल दिया है।
0: बिल्कुल,
1: जो लोग समय रहते इन तकनीकों को सीख रहे हैं, वे भविष्य के अवसरों का लाभ उठा रहे हैं। दूरदृष्टि का अर्थ केवल तकनीक अपनाना नहीं है दोस्तों, बल्कि उसका जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करना भी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, ऐसे में हमारे युवा साथियों से हम यही कहना चाहेंगे कि उन्हें हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए।
1: जी हाँ,
0: कि जो काम वे आज कर रहे हैं, क्या वह काम उन्हें 5 साल बाद भी गर्व का एहसास करवाएगा। यदि श्रोता साथियों आपको उत्तर हाँ मिलता है, तो आप समझ लीजिए कि दूरदृष्टि के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: जीवन में सपने देखना बहुत अच्छी बात है साथियों, लेकिन सपनों के साथ सही योजना, अनुशासन, मेहनत और धैर्य जोड़ देना ही दूरदृष्टि कहलाता है। यही गुण हमें भीड़ से अलग पहचान दिलाता है जागृति जी। ऐसे में श्रोता साथियों, दृष्टि हमें वर्तमान दिखाती है, लेकिन दूरदृष्टि भविष्य गढ़ती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए केवल ये मत देखिए कि आज आपके सामने क्या है, बल्कि ये भी सोचिए कि आज का आपका हर निर्णय आने वाले कल को कैसे प्रभावित कर रहा है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि सच्चा स्वराज केवल स्वतंत्रता का नाम नहीं, बल्कि ऐसी सोच का नाम है जिसमें व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं ले, समाज के हित को प्राथमिकता दे और भविष्य के प्रति जिम्मेदार बने।
0: बिल्कुल,
1: जब प्रत्येक नागरिक दूरदृष्टि अपनाएगा तो गांव आत्मनिर्भर बनेंगे, युवा रोजगार सृजक बनेंगे, पर्यावरण सुरक्षित रहेंगे, समाज में सहयोग और विश्वास बढ़ेगा, साथ ही राष्ट्र अधिक सशक्त बनेगा।
0: जी हाँ,
1: यही सच्चे स्वराज की वास्तविक भावना है। हम कह सकते हैं श्रोताओं कि दूरदृष्टि जन्मजात नहीं होती, बल्कि इसे विकसित की जा सकती है। इसके लिए नियमित अध्ययन करना होगा, अनुभवी लोगों से सीखना होगा, दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने होंगे, हर निर्णय के भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव विचार करने होंगे, समय का सदुपयोग करना होगा, साथ ही नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को तैयार रखना होगा और असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ना होगा।
0: जी हाँ जागृति जी, श्रोता साथियों, दूरदृष्टि व्यक्ति को परिस्थितियों का गुलाम नहीं, बल्कि समाधान खोजने वाला बनाती है। समस्याएं हर किसी के जीवन में आती है साथियों, लेकिन दूरदृष्टि रखने वाला व्यक्ति केवल परेशानी नहीं देखता, बल्कि उससे निकलने का रास्ता भी तलाशता है।
1: जी हाँ,
0: ऐसे में बिना पूरी जानकारी के लिए लिया गया फैसला कई बार आपके लिए गलत साबित हो सकता है। अगर आप श्रोता साथियों समझदार व्यक्ति हैं, तो आप पहले उस निर्णय के बारे में सीखेंगे, फिर एक बेहतर निर्णय लेंगे।
1: बिल्कुल,
0: आज का आपका एक एक घंटा यदि सही दिशा में आप लगाएंगे, तो आने वाले वर्षों में वही सफलता की मजबूत नींव बनेगा।
1: बिल्कुल कशिश, एक प्रेरक प्रसंग है जो हमारे श्रोता साथियों को हम सुनाना चाहेंगे। साथियों, एक नगर में 2 कुम्हार रहते थे। पहला कुम्हार हर दिन उतने ही घड़े बनाता था जितने उसी दिन बिक जाए।
0: बिल्कुल,
1: वही दूसरा कुम्हार बरसात आने से पहले ही बड़ी संख्या में घड़े तैयार कर लेता था। कशिश, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। कुछ महीनों बाद हमने देखा कि बहुत भारी वर्षा हुई, मिट्टी गीली होने के कारण कोई नया घड़ा बना ही नहीं सक रहा था। पहले कुम्हार का काम बंद हो गया, जबकि दूसरे कुम्हार के पास पहले से तैयार घड़े थे। उसकी बिक्री बढ़ गई और पूरे नगर में उसकी प्रशंसा होने लगी। उसने मुस्कुराकर कहा कि मैंने केवल आज को नहीं देखा था, मैंने आने वाले कल को भी देखा था। और श्रोता साथियों, यही दूरदृष्टि का सबसे सरल उदाहरण है। यही दृष्टि हमें रास्ता दिखाती है, लेकिन दूरदृष्टि मंजिल तक पहुंचाती है।
0: जी
1: वर्तमान को समझना बहुत जरूरी है, परंतु भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लेना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जो व्यक्ति समाज और राष्ट्र दूरदृष्टि के साथ आगे बढ़ते हैं, वे समय की चुनौतियों को अवसर में बदल देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आज आवश्यकता केवल देखने वालों की नहीं बल्कि भविष्य गढ़ने वालों की है। अगर प्रत्येक युवा अपने जीवन, समाज और राष्ट्र के प्रति दूरदृष्टि अपनाएगा तो भारत न केवल विकास करेगा बल्कि विश्व के लिए प्रेरणा भी बनेगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे युवा साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हो चुकी हैं और हमने जाना कि किस प्रकार से दृष्टि जो है वो वर्तमान का रास्ता हमें दिखा सकती है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन दूरदृष्टि जो है वो हमारे भविष्य को बेहतर बनाएगी। तो जैसा कि बातें हो चुकी है, समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत सुनवा दे हम।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं इस गीत को। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटले मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है। जी हाँ, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट, और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर। स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वगर रेडियो 90.8 FM पर।
1: साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है कि कम संसाधनों में हम बड़ा परिवर्तन किस तरह से कर सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: अंजलि, परिवर्तन हमेशा बड़े संसाधनों से नहीं बल्कि बड़े विचारों, मजबूत इच्छा शक्ति और सही दिशा में उठाए गए छोटे छोटे कदमों से आता है।
0: जी हाँ,
1: इतिहास गवाह है कि अनेक महान बदलाव सीमित संसाधनों के बावजूद हुए। जिस व्यक्ति या समाज ने उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करना सीख लिया, उसने असंभव लगने वाले लक्ष्यों को भी संभव बना दिया।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें बनी रहेंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं एक प्यारे से गीत को। तो साथियों, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के

0: कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारे श्रोता साथियों से बातचीत करने का विषय है, कम संसाधनों में हम बड़ा परिवर्तन किस तरह से कर सकते हैं।
1: जी जी।
0: तो साथियों, जैसा कि परिवर्तन कभी संसाधनों का मोहताज नहीं होता, बल्कि सोच, संकल्प और सामूहिक प्रयास का परिणाम होता है।
1: बिल्कुल,
0: ये वाक्य केवल प्रेरणा नहीं बल्कि जीवन का एक सत्य है। अक्सर हम ये मान लेते हैं अंजलि की किसी बड़े बदलाव के लिए बहुत अधिक धन, आधुनिक तकनीक या विशाल व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम इतिहास, समाज और अपने आसपास के जीवन को देखें तो पाएंगे कि सबसे बड़े परिवर्तन उन लोगों ने किए हैं जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद हार नहीं मानी।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने जो उपलब्ध था उसी को अपनी ताकत बनाया और जो कठिन परिस्थितियों को अवसर में बदल दिया।
1: बिल्कुल जागृति जी, आज भारत आत्मनिर्भरता, नवाचार और जन भागीदारी की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे समय में श्रोता साथियों, कम संसाधनों में बड़ा परिवर्तन केवल एक विचार नहीं बल्कि विकास का प्रभावी मंत्र बन चुका है। चाहे कोई छात्र हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, शिक्षक हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, जागृति जी, हर व्यक्ति यदि अपने संसाधनों का सही उपयोग करे तो अपने परिवार, समाज और देश में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यही अब बात आती है कि परिवर्तन की शुरुआत सोच से होती है।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हर परिवर्तन की पहली सीढ़ी सकारात्मक सोच होती है। यदि मन में विश्वास हो कि परिवर्तन संभव है तो सीमित साधन भी पर्याप्त बन जाते हैं। इसके विपरीत यदि सोच नकारात्मक हो तो असीमित संसाधन भी व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं।
0: जी हाँ।
1: आज अनेक युवा हैं जागृति जी, जो छोटे छोटे विचारों से बड़े स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं। कई सामाजिक कार्यकर्ता बिना किसी बड़े आर्थिक सहयोग के शिक्षा, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है श्रोता साथियों कि परिवर्तन की वास्तविक शक्ति व्यक्ति की सोच से होती है।
0: बिल्कुल अंजलि, हमारे पास जो है उसका सही उपयोग करना ही सफलता की पहली शर्त है। अक्सर लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि उनके पास क्या नहीं है, जबकि सफल लोग इस बात पर काम करते हैं कि उनके पास क्या है। अगर किसी गांव में बड़ी फैक्ट्री नहीं है तो वहां की खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प या स्थानीय कला ही विकास का आधार बन सकती है।
1: जी जी।
0: किसी विद्यालय में आधुनिक सुविधाएं नहीं है तो एक समर्पित शिक्षक अपने ज्ञान और मेहनत से विद्यार्थियों का भविष्य बदल सकता है। यही संसाधनों के सदुपयोग का वास्तविक अर्थ होता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, सीमित संसाधन व्यक्ति को नए समाधान खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। यही नवाचार की शुरुआत है। जब समस्याएं अधिक होती हैं श्रोता साथियों और संसाधन कम, तब व्यक्ति अपनी रचनात्मक क्षमता जो है उसका उपयोग करने लगता है।
0: बिल्कुल
1: जागृति जी, आज देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां युवाओं ने कम लागत वाली मशीनें बनाई हैं, किसानों ने पानी बचाने की नई तकनीक अपनाई है और महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर आत्मनिर्भरता की मिसाल प्रस्तुत की है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि नवाचार केवल तकनीक नहीं बल्कि सोचने का नया तरीका है।
0: जी हाँ अंजलि, हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति अकेले सीमित कार्य कर सकता है, लेकिन जब पूरा समाज साथ में आता है तो छोटे संसाधन भी बड़े परिणाम देते हैं। गाँव में हम देखते हैं कि श्रम दान से तालाबों का निर्माण होता है, विद्यालयों की मरम्मत होती है, सड़क निर्माण होता है, स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, वृक्षारोपण जैसे कार्य किए जाते हैं। ये सारे कार्य बिना बड़े बजट के सफल हुए हैं। जब लोग स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं तब परिवर्तन स्थायी बनता है और यही सामुदायिक सहभागिता लोकतंत्र और सच्चे स्वराज की सबसे बड़ी पहचान है।
1: जी हाँ, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि ज्ञान ऐसा धन है जिसे कोई नहीं छीन सकता। शिक्षा व्यक्ति को सही निर्णय लेने की क्षमता देती है और सीमित संसाधनों में भी बेहतर जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। आज जागृति जी, डिजिटल माध्यम से शिक्षा पहले की तुलना में अधिक सुलभ हो गई है। एक मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से लाखों विद्यार्थी नई नई जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: यदि सीखने की इच्छा हो तो सीमित संसाधन भी पर्याप्त हैं।
0: जी हाँ अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि सीमित संसाधनों में हम बड़ा परिवर्तन किस तरह से कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी हमारे श्रोता साथियों के साथ में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि परिवर्तन की शुरुआत सोच से किस तरीके से होती है, उपलब्ध संसाधनों का सही प्रयोग हमें कैसे करना है, साथ ही नवाचार और रचनात्मक सोच के महत्व के बारे में जाना, और ये भी हम जान पाए जागृति जी कि सामूहिक प्रयास से असंभव कार्य भी कैसे संभव हो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ हम जान पाए शिक्षा सबसे बड़ा संसाधन है। यही अब बात आती है समय के सदुपयोग की। तो श्रोता साथियों, समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता।
1: जी हाँ।
0: जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। विद्यार्थी नियमित अध्ययन करे, युवा अपने कौशल का विकास करे, किसान नई तकनीकों की जानकारी ले और समाज सेवी लोगों के बीच जागरूकता फैलाए, तो ये सभी समय के सदुपयोग के उदाहरण होते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करने के बजाय स्वयं पहल करना परिवर्तन का सबसे प्रभावी मार्ग है।
0: बिल्कुल,
1: आत्मनिर्भर व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोज लेता है। अंजलि, आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर परिवार और आत्मनिर्भर युवा ही मजबूत राष्ट्र की नींव रखते हैं।
0: जी हाँ।
1: जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझता है तब पूरे समाज का विकास अपने आप होने लगता है। श्रोताओं, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी हमेशा बड़े अभियानों की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम सब मिलकर प्रति वर्ष एक पौधा लगाएं, वर्षा जल का संरक्षण करें, बिजली की बचत करें और प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे अंजलि, तो इसका प्रभाव पूरे देश पर दिखाई देता है।
0: जी हाँ।
1: एक परिवार द्वारा की गई छोटी सी बचत भी लाखों परिवारों के साथ मिलकर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है।
0: जी हाँ, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि भारत विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है, जैसा कि हम कार्यक्रम में हमेशा श्रोता साथियों से बातचीत करते रहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए परिवर्तन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी श्रोता साथियों युवाओं पर ही है। युवा नई तकनीक अपनाएं, सामाजिक समस्याओं के समाधान खोजें, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और जागरूकता फैलाएं, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दें और इसी के साथ जागृति जी स्वयं सेवा की भावना भी विकसित कर सकते हैं। यदि युवा केवल शिकायत करने के बजाय समाधान का हिस्सा बने तो देश की तस्वीर बदल सकती है।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ महिलाओं की सहभागिता भी जरूरी है, यानी कि श्रोता साथियों परिवर्तन की सबसे मजबूत आधारशिला महिलाएं हैं। आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लाखों महिलाएं छोटे छोटे व्यवसाय चला रही हैं, परिवार की आय बढ़ा रही हैं और समाज में नई पहचान भी बना रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे कि कम पूंजी से शुरू हुए अनेक महिला उद्यम आज हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बन चुके हैं। इससे यह सिद्ध होता है श्रोता साथियों कि इच्छा शक्ति और परिश्रम संसाधनों की कमी को पीछे छोड़ सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, भारत की आत्मा गांव में बसती है और अगर गांव आत्मनिर्भर बनेंगे तो देश स्वतः ही मजबूत होगा।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, जल संरक्षण, जैविक खेती, स्थानीय उद्योग, सामुदायिक रेडियो, ग्राम सभा की सक्रियता, स्वच्छता अभियान और डिजिटल शिक्षा, ये सारे प्रयास सीमित संसाधनों में भी ग्रामीण विकास का नया अध्याय लिख सकते हैं। और जब गांव मजबूत होते हैं अंजलि, तभी सच्चे अर्थों में राष्ट्र का विकास संभव होता है।
0: बिल्कुल,
1: सच्चा स्वराज केवल शासन व्यवस्था नहीं है बल्कि जिम्मेदार नागरिकता का नाम है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझता है, संसाधनों का सम्मान करता है और समाज के लिए कार्य करता है श्रोताओं, तभी वास्तविक स्वराज स्थापित होता है।
0: बिल्कुल,
1: कम संसाधनों में बहुत बड़ा परिवर्तन सच्चे स्वराज की भावना को मजबूत करता है अंजलि, और ये हमें सिखाता है कि विकास केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सब नागरिकों का कर्तव्य भी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, कम संसाधनों में बड़ा परिवर्तन केवल एक प्रेरक विचार नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक प्रभावी शैली है। यह हमें सिखाता है कि सफलता का आधार धन नहीं बल्कि दूरदृष्टि, परिश्रम, अनुशासन, नवाचार और सामूहिक प्रयास है।
1: बिल्कुल,
0: यदि हम उपलब्ध संसाधनों का सम्मान करें, समय का सदुपयोग करें, शिक्षा और कौशल को अपनाएं, पर्यावरण की रक्षा करें और समाज के साथ मिलकर कार्य करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। हम सभी को श्रोता साथियों संसाधनों की कमी के लिए बहुत सारी चीजों के लिए सोचने की जरूरत नहीं है बल्कि जो उपलब्ध है उसी से नए अवसर पैदा करने हैं।
1: जी हाँ।
0: हम अपने परिवार, गांव, शहर और देश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं, क्योंकि इतिहास उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने परिस्थितियों को दोष नहीं दिया बल्कि सीमित संसाधनों को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाकर समाज में नया परिवर्तन लाया है।
1: बिल्कुल अंजलि, इसलिए हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि कम संसाधनों में बड़ा परिवर्तन केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन जीने की ऐसी प्रेरणा है जो हमें ये सिखाती है कि बदलाव की शुरुआत बाहरी साधनों से नहीं बल्कि भीतर के साहस, संकल्प और सकारात्मक सोच से होती है।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि आपने कहा था कि इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया वही समाज और देश के लिए प्रेरणा बने।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, आपसे कहना चाहेंगे ये विषय और भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होती है और अगर युवा ये संकल्प ले लें अंजलि कि वे शिकायतों के बजाय समाधान खोजेंगे, संसाधनों की कमी के बजाय अवसरों को पहचानेंगे और केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी कार्य करेंगे तो भारत को विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त बनने से कोई नहीं रोक सकता।
0: बिल्कुल,
1: परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत श्रोता साथियों धन नहीं बल्कि जागरूक नागरिक, ईमानदार प्रयास और सामूहिक सहभागिता होती है। इसीलिए आपको कहना चाहेंगे कि परिवर्तन की मशाल हमेशा किसी बड़े महल से नहीं बल्कि एक छोटे से दीपक से जलती है।
0: जी हाँ।
1: जब हर हाथ जिम्मेदारी उठाएगा, हर मन सकारात्मक सोच को अपनाएगा और हर नागरिक अपने हिस्से का योगदान देगा अंजलि, तब सीमित संसाधन भी असीम संभावनाओं में बदल जाएंगे और यही सच्चे स्वराज की भावना है, यही आत्मनिर्भर भारत का मार्ग है और यही उज्जवल भविष्य की सबसे मजबूत नींव है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए हम स्वयं बदले, समाज को बदले और मिलकर ऐसा भारत बनाए जहां संसाधनों की नहीं संकल्पों की पहचान हो।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें की कि किस तरीके से परिवर्तन की शुरुआत जो है उसमें संसाधनों की कमी किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं होती है, कम संसाधनों में भी हम बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आशा करते हैं श्रोता साथियों कि ये सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
1: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
0: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
1: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
1: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है बरसात का मौसम जो है उसमें हरियाली, ठंडी हवाएं और प्रकृति की सुंदरता, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं।
0: जी हाँ,
1: लेकिन श्रोता साथियों, यही जो मौसम है वो कई स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियों को भी साथ लेकर आता है। चाहे रोज काम पर जाना हो, खेतों पर पहुंचना हो, बच्चों का स्कूल हो या किसी रिश्तेदार की यात्रा, बारिश के दौरान थोड़ी सी लापरवाही हमें बीमार कर सकती है।
0: बिल्कुल,
1: आज कार्यक्रम में हम यही बातचीत करने वाले हैं कि बारिश के मौसम में यात्रा के दौरान हम अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखें।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है। तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले विषय से तो रूबरू करा ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं बारिश के मौसम में यात्रा के दौरान स्वास्थ्य का ध्यान हम कैसे रखें।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि वर्षा ऋतु में वातावरण में नमी अधिक होती है, इस कारण हम देखते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस और फफूंद तेजी से बढ़ते हैं। जगह जगह पर पानी भर जाने से मच्छर पनपने लगते हैं जो डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों को फैलाते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, यात्रा के दौरान बाहर का दूषित भोजन, खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थ, अस्वच्छ पानी और गीले कपड़े लंबे समय तक रहने से संक्रमण का खतरा है वो कहीं गुना बढ़ सकता है।
1: बिल्कुल
0: कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग जैसे कि श्रोता साथियों बच्चों और बुजुर्गों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि बारिश का मौसम वातावरण को ठंडा और सुहावना बना देता है, लेकिन इस समय नमी बढ़ने से जैसा कि बैक्टीरिया, वायरस और मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है, यात्रा के दौरान गीले कपड़े, गंदा पानी, अस्वच्छ भोजन और लंबे समय तक भीगना सर्दी, बुखार, पेट के संक्रमण और त्वचा संबंधित समस्याओं का कारण बन सकता है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए श्रोता साथियों यात्रा केवल सुरक्षित ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी सोच समझ कर करनी चाहिए। किसी भी यात्रा पर निकलने से पहले मौसम का अनुमान जरूर रखें। यदि बहुत तेज बारिश या बाढ़ की चेतावनी हो तो यात्रा टालना ही बेहतर होता है।
0: जी हाँ।
1: इसी के साथ अपने साथ हमें छाता और अच्छी गुणवत्ता का रेनकोट लेकर जाना है, पानी से बचाने वाला बैग और प्लास्टिक कवर हमें रखने हैं, अतिरिक्त सूखे कपड़े, तौलिया, पीने के लिए साफ पानी, हल्का और पौष्टिक नाश्ता, आवश्यक दवाइयाँ, सैनिटाइजर और साबुन, मच्छर भगाने वाली क्रीम, ये सारी चीजें हमारे पास में होनी ही चाहिए।
0: जी हाँ।
1: इसी के साथ श्रोता साथियों, बरसात में सबसे अधिक बीमारियां दूषित पानी से फैलती है। यात्रा के दौरान सड़क किनारे या खुले स्रोत का पानी पीने से बचें। यदि संभव हो तो घर से पानी की बोतल लेकर निकले और आवश्यकता पड़ने पर उबला हुआ या पैक बोतल वाला पानी ही हमें पीना चाहिए।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमें श्रोता साथियों बाहर का भोजन है वो सोच समझ कर खाना है। यात्रा के दौरान सड़क के किनारे खुले में बिकने वाले कटे फल, चाट, गोलगप्पे, बासी भोजन और लंबे समय तक खुले खाद्य पदार्थों का सेवन हमें नहीं करना है। गर्म और ताजा भोजन श्रोता साथियों आप खाएं। फल खाने से पहले श्रोता साथियों अच्छी तरह से उसे धो लें। अधिक तला भुना भोजन पाचन को प्रभावित कर सकता है। घर से सूखे नाश्ते जैसे कि श्रोता साथियों भुना चना, मुरमुरा, ड्राई फ्रूट्स, मूंगफली और बिस्किट भी आप साथ में रख सकते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, यात्रा के दौरान खुले में बिकने वाले कटे फल, चाट, गोलगप्पे और लंबे समय से रखा भोजन खाने से हमें बचना है। इसकी जगह हमें घर का बना भोजन जैसा कि आपने बताया खाना चाहिए। इसी के साथ हमें फल जो है जिन्हें छील कर खाया जा सके वैसे ही खाने हैं।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों ऐसा भोजन शरीर को ऊर्जा भी देता है और संक्रमण से बचाता है।
0: बिल्कुल।
1: यदि यात्रा के दौरान बारिश में हम भीग जाएं तो जैसे ही अवसर मिले हमें गीले कपड़े बदल देने हैं, शरीर को अच्छी तरह सुखाना है, गर्म पेय पदार्थ लेने हैं, पैरों को सुखाकर रखना है और यदि जूते भीग गए हो तो उन्हें भी सुखाकर दोबारा पहनना है।
0: बिल्कुल।
1: लगातार गीले कपड़े पहनने से सर्दी, बुखार और फंगस संक्रमण हो सकता है। श्रोता साथियों बरसात में सबसे ज्यादा परेशानी पैरों को होती है। लंबे समय तक गीले जूते न पहने, यदि संभव हो तो अतिरिक्त चप्पल अपने साथ रखें।
0: जी हाँ।
1: घर पहुँच कर पैरों को साबुन से धोएं, उंगलियों के बीच में अच्छी तरह से सुखाएं, इससे फंगस संक्रमण और खुजली से बचाव मिलता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बारिश के मौसम में यात्रा के दौरान हम हमारे स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले मनीषा हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात आती है कि बारिश के मौसम में जगह जगह पानी भर जाता है जिससे मच्छर तेजी से बढ़ते हैं।
1: हाँ।
0: यात्रा के दौरान हमें पूरी बाह के कपड़े पहनने चाहिए, मच्छर भगाने वाली क्रीम हम लगा सकते हैं और शाम के समय में विशेष सावधानी हमें रखनी है। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए यह बहुत जरूरी है।
1: हाँ।
0: श्रोता साथियों, बच्चों और बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। उनकी यात्रा में समय पर भोजन, पर्याप्त पानी, सूखे कपड़े, आवश्यक दवाइयाँ और आराम का हमें ध्यान रखने की जरूरत है। यदि कोई गर्भवती महिला यात्रा कर रही है तो उसे डॉक्टर की सलाह लेकर ही यात्रा करनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: बहुत लंबी यात्रा से उन्हें बचना है, फिसलन वाली जगहों पर सावधानी रखनी है, पर्याप्त पानी और पौष्टिक भोजन लेते रहना है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर श्रोता साथियों को बताएं कि यात्रा के दौरान अपनाई जाने वाली कुछ आदतें हैं, जैसे कि हमें समय पर भोजन करना है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, गीले कपड़े श्रोता साथियों तुरंत हमें बदल देने हैं, खुले में बिकने वाले भोजन से हमें बचना है श्रोता साथियों, साथ ही हमारे हाथों की स्वच्छता हमें बनाए रखनी है। जैसा कि अंजलि जी आपने बताया कि पर्याप्त पानी भी हमारे श्रोता साथियों को पीना चाहिए। श्रोता साथियों, किसी भी बीमारी के कारण या लक्षण हमें दिखाई देने पर हमें डॉक्टर से सलाह लेनी है। साथ ही श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि बारिश का मौसम आनंद, ताजगी और प्रकृति की सुंदरता को लेकर आता है, लेकिन यह मौसम स्वास्थ्य संबंधित कई सारी चुनौतियां भी साथ लाता है। यात्रा के दौरान थोड़ी सी भी सावधानी श्रोता साथियों हमें अनेक बीमारियों से बचा सकती है, जैसे कि स्वच्छ पानी, ताजा भोजन करना, व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाए रखना, मच्छरों से बचाव करना, गीले कपड़े तुरंत बदलना, पर्याप्त आराम करना, साथ ही श्रोता साथियों प्राथमिक उपचार सामग्री भी साथ रखनी है। ये सभी श्रोता साथियों छोटे छोटे कदम ही जो हमारी यात्रा को सुरक्षित और सुखद बना सकते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि गांव में कई बार कच्चे रास्ते और पानी भरे खेतों से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बिना जरूरत पानी में न उतरें, तेज हवा वाले पानी को पार करने का प्रयास न करें, बिजली के खंभों और टूटे तारों से दूर रहें, समूह में यात्रा करना अधिक सुरक्षित होता है। श्रोता साथियों, बारिश के दौरान जल्दी पहुंचने की जल्दबाजी कई दुर्घटनाओं का कारण बनती है। यात्रा करते समय धैर्य, वाहन धीरे चलाएं, मोबाइल का उपयोग करते हुए सड़क पार न करें, थकान महसूस हो तो थोड़ा विश्राम करें। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि बरसात में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रखना भी आवश्यक है। इसके लिए पर्याप्त नींद लें, मौसमी फल, हरी सब्जियां खाएं, हल्का व्यायाम करें, स्वच्छता बनाए रखें और अनावश्यक तनाव से बचें। यदि किसी रास्ते पर पानी भर गया हो और पुल क्षतिग्रस्त हो या कोई खतरा हो तो उसकी जानकारी दूसरों तक पहुंचाएं। सामूहिक जागरूकता कई लोगों की जान बचा सकती है। श्रोता साथियों, गांव में जल भराव रोकने, नालियों की सफाई और स्वच्छता बनाए रखने में सभी लोग मिलकर योगदान भी दे सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि आराम और पर्याप्त नींद भी जरूरी होती है। लंबी यात्रा है वो शरीर को थका देती है श्रोता साथियों, यदि पर्याप्त आराम न मिले तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए यात्रा के दौरान समय समय पर हमें विश्राम करना है और रात को अच्छी नींद लेनी है। हम देखते हैं कि थका हुआ शरीर संक्रमण का जल्दी शिकार हो जाता है, जबकि श्रोता साथियों पर्याप्त आराम शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है।
0: बिल्कुल मनीषा, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि बारिश का मौसम जीवन में नई ताजगी और खुशियाँ लेकर आता है, लेकिन सुरक्षित और स्वस्थ रहना हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है। यात्रा के दौरान छोटी छोटी सावधानियाँ रखकर हम कई बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए श्रोता साथियों कि सुरक्षित यात्रा केवल मंजिल तक पहुँचने का नाम नहीं है, बल्कि स्वस्थ शरीर और सतर्क सोच के साथ घर लौटने का नाम भी है। जब हम स्वयं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं तो परिवार, समाज और पूरे समुदाय के लिए भी एक अच्छी मिसाल बनते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, इस बरसात में सावधानी को अपनी आदत बनाएं और हर यात्रा को सुरक्षित, स्वस्थ और सुखद बनाएं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

भाई न बोनो, घर तकी निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हेती जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोनो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितली शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे, अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नती, बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा, ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे, प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे, आज नाना कदम है, ये अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारतीनू खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट कशिश पारशर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हाजिर होते हैं तो आपसे हम बात करते हैं कुछ नए विषय को लेकर। आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसे ही प्रेरणादायक नए विषय को लेकर हम बात करने वाले हैं। साथियों, जैसा कि हम जो इंसान हैं वो जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हर किसी का ये सपना होता है कि वो अपने जीवन में कुछ ऐसा करे कि उसके घर के सभी सदस्य, माता पिता, समाज, आसपास के लोग सबको उस पर गर्व हो। कोई अच्छी नौकरी चाहता है तो कोई सफल व्यवसाय करना चाहता है। साथियों, तो कोई ऐसे भी हैं जो अच्छा करियर बनाकर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर श्रोता साथियों ढेर सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, एक सवाल हम सबके मन में खड़ा रहता है कि अगर सपने इतने बड़े हैं तो हम उन्हें पूरा करने की दिशा में पहला कदम क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और वह पहला कदम है साथियों, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। जानेंगे साथियों कि कंफर्ट जोन से बाहर हम कैसे निकले और किस तरीके से हमने जो अपना एक सुरक्षित वातावरण बना रखा है उसमें हम दब कर रह रहे हैं। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है दोस्तों, तो इसी दस्तूर को निभाते हुए पहले सुनते हैं यहाँ पर एक प्यारा सा गीत, फिर आगे हम बातचीत फिर से करेंगे। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों विषय आप जान चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। साथियों, जैसा कि गीत से पहले भी मैंने आपको बताया था कि हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि वो अपने जीवन में सफल बने, कुछ नया करे, कुछ ऐसा करे कि उसके आसपास के लोग उसके समाज में उसकी एक अलग छवि उभर कर आए। लेकिन कई बार ऐसा हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने सुरक्षित वातावरण यानी कि कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि कंफर्ट जोन वह जगह है जहां हमें कोई जोखिम नहीं उठाना पड़ता, किसी समस्या का सामना करना ही नहीं पड़ता है, जहां श्रोता साथियों सब कुछ हमारे हिसाब से होता है, जहां डर हमें कम लगता है और मेहनत भी थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। लेकिन श्रोता साथियों, यही सुविधा धीरे धीरे कब हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है हमें पता ही नहीं चलता। जैसा कि आज के जो हमारे युवा हैं, वो प्रतिभाशाली हैं, शिक्षित भी हैं और अवसरों से भी घिरे हुए हैं, फिर भी कई बार वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन की दीवारों को तोड़ने का साहस ही नहीं जुटा पाते। साथियों, हाँ, ये समस्या सभी के साथ है दोस्तों, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते और उसी कंफर्ट जोन के चक्रव्यूह में फंस कर रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको सच बताऊं तो कंफर्ट जोन से तो बाहर हमें निकलना ही होगा, क्योंकि अगर हम अपने सुरक्षित वातावरण से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो हम समस्याओं को झेलना कैसे सीखेंगे, उनका सामना करना कैसे सीखेंगे साथियों, और फिर उन समस्याओं का, उन संघर्षों का हल कैसे निकलेगा, और जो एक मेहनत की सच्ची सफलता होती है श्रोता साथियों, वो हमें कैसे मिलेगी। इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना तो बहुत जरूरी है। जैसे कि दोस्तों, कंफर्ट जोन जो है वो एक जगह नहीं है बल्कि एक मानसिक स्थिति है। साथियों, ये वो अवस्था होती है जहां हम वही काम करते हैं जो हमें आसान लगता है। नई चीजें सीखने, नए लोगों से मिलने, नई जिम्मेदारियां लेने या फिर असफलता का जोखिम उठाने से हम बचने लगते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है अगर इस सुविधा से ये हो जाएगा तो मैं वहां जाकर इतना पसीना और इतनी मेहनत क्यों करूं, हार्ड वर्क क्यों करूं जब स्मार्ट वर्क हो रहा है तो। लेकिन दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हर काम को स्मार्ट तरीके से ही किया जाए। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें मेहनत करनी होती है, संघर्ष करना होता है श्रोता साथियों। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, जोखिमों को उठाना होगा श्रोता साथियों, तभी हम अपने सही जीवन को जीना सीख पाएंगे। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम में मेरी आपसे बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी ये बातें हम करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के बाद मैं फिर से रुक करना चाहूंगी कार्यक्रम सपनों की उड़ान की ओर। जैसा कि बातें हमारी गीत से पहले बहुत अच्छी चल रही थी और हम जान पाए थे कि ये कंफर्ट जोन का जो एरिया होता है वो होता क्या है और हम क्यों कंफर्ट जोन में ही रह रहे हैं। अब यही बात करते हैं श्रोता साथियों कि कंफर्ट जोन से बाहर न जाने के क्या कारण हो सकते हैं। साथियों, सबसे पहला तो ये है कि कई लोगों को असफलता का डर होता है, उन्हें ऐसा लगता है जिसके कारण वो किसी भी कार्य की शुरुआत नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर वो ये काम करेंगे तो वो असफल हो जाएंगे, फिर लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि सफलता उन्हीं को मिलती है दोस्तों जो असफल होने का साहस रखते हैं। और दूसरी बात ये साथियों कि कुछ लोगों को दूसरों की राय का डर भी होता है। जैसे कि दोस्तों, आज सोशल मीडिया के दौर में लोग अपने निर्णय से अधिक दूसरों की राय को महत्व देने लगे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो कह रहा है तो सही कह रहा होगा। कई युवा ऐसे हैं साथियों जो अपने सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ मजाक उड़ाने के डर से हम अपनी सफलता को क्यों छोड़ें, इस बारे में सोचिएगा दोस्तों। क्योंकि असफलता को अगर हम झेलेंगे, असफलता का हम अगर सामना करेंगे तो सफलता तो करीब आ ही जाएगी और एक न एक दिन हम जरूर सफल हो पाएंगे श्रोता साथियों। साथ ही आपको बदलाव से घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा जो श्रोता साथियों स्वभाव है वो स्थिरता को ही पसंद करता है। नई जगह, नई जिम्मेदारियां, नई नौकरी, नई शुरुआत, इन सब में श्रोता साथियों अनिश्चितता होती है, इसलिए हमारा मन जो है वो पुराने रास्ते पर ही चलता रहता है। हम कुछ नया नहीं करना चाहते। कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा साथी श्रोता साथियों ये है कि कल से शुरुआत करेंगे। दोस्तों, ये जो कल है वो कई बार वर्षों तक नहीं आता। हमें लगता है कि ये काम है, हम उसे कल कर लेंगे, लेकिन वो कल का परसों हो जाता है, परसों का तरसों हो जाता है, तरसों का नरसों हो जाता है साथियों। तो ऐसे ही समय चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है और हमारा कल कभी आता ही नहीं है। इसलिए दोस्तों, जरा आप अपनी आदतों पर विचार कीजिएगा कि क्या कहीं आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं श्रोता साथियों कि आप भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। कहीं ये जो सारे डर है वो आपको भी तो नहीं है साथियों। आप जरूर सोचिएगा और अगर ऐसा है तो आज से ही बदलाव की शुरुआत कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, कंफर्ट जोन में रहने के ढेर सारे नुकसान आपको होंगे, जैसे कि आपकी आंखों पर कंफर्ट जोन में रहने की पट्टी बंधी हुई होगी, जिसके कारण आपको नए अवसर दिखेंगे ही नहीं, प्रतिभा आपके अंदर की विकसित नहीं हो पाएगी, आत्मविश्वास आपका कम होने लगेगा साथियों, जीवन एक जैसा चलता रहेगा, कुछ नया आपको जीवन में देखने को मिलेगा ही नहीं, फिर आगे जाकर आप खुद ही अपने जीवन से बोर हो जाएंगे और जो हमारी वास्तविक क्षमता होती है उसे भी हम पहचान नहीं पाएंगे साथियों। इसलिए ये तो आप ठान लीजिए कि कंफर्ट जोन से तो बाहर आपको निकलना ही है। जैसे कि दोस्तों, आपको करना क्या है कि आपको हर सप्ताह कुछ नया सीखने की कोशिश करनी है। आपका मन नहीं कर रहा है साथियों, लेकिन फिर भी आप कुछ नया सीखिए, जैसे कि नई भाषा, नई तकनीक, नई किताबें पढ़िए और नया कौशल सीखिए। दोस्तों, सीखना कभी आप बंद न करें, क्योंकि कई लोगों को आपने देखा ही होगा कि जो ये बोलते हैं कि यार मेरी तो उम्र हो गई, अब मैं पढ़ के क्या करूंगा, या मैं अब मैदान में खेल नहीं

सकता। श्रोता साथियों, ऐसी ढेर सारी बातें हैं जो हमें आसपास सुनने को मिलती है, या हमारे अंदर भी ये सारी बातें होती है, लेकिन हमें बदलाव की शुरुआत करनी है तो हमें अपनी सोच को भी बदलना होगा, अपनी आदतों को भी बदलना होगा। साथियों, आपको सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना होगा और छोटे छोटे जोखिम भी लेना आपको शुरू करना होगा। दोस्तों, याद रखिए कि बड़ा बदलाव एक दिन में तो नहीं आएगा, छोटे छोटे कदम आप बढ़ाएंगे तो आप एक न एक दिन अपनी सफलता तक, अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। आप कोशिश करना मत छोड़िए साथियों, असफलता को शिक्षक मानकर चलिए। दोस्तों, अगर आप असफलता को अंत मानेंगे तो वो आपको कभी आगे बढ़ने देगी ही नहीं, लेकिन वही आप असफलता से कुछ नया सीखेंगे तो आपको नए नए अवसर मिलेंगे और फिर आप आगे भी बढ़ेंगे। दोस्तों, याद रखिए, गलतियाँ कमजोरी नहीं होती, गलतियाँ तो सबसे होती है, और ये जो गलतियाँ होती है वो सीखने का अवसर होती है। इसलिए गलतियों से डरिए मत, गलतियों का सामना कीजिए, उससे सीख लीजिए और आगे बढ़ते रहिए साथियों। साथ ही अपने जीवन में सकारात्मक लोगों के साथ बातचीत कीजिए, अपनी बातें उनसे साझा कीजिए और उनसे सलाह लीजिए साथियों। इससे होगा ये कि जैसी आपकी संगति होगी वैसी आपकी सोच होगी, और शायद हो सकता है कि आप उनकी बातों को सुनकर प्रभावित हो जाएं, या फिर आपको अंदर से उनकी बातें प्रोत्साहित करने लगे और आप खुद ही अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकल आए। तो दोस्तों, आपसे मैं यही कहना चाहूंगी कि कम्फर्ट जोन हमें कुछ समय के लिए सुरक्षित महसूस करा सकता है, लेकिन ये हमें हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। श्रोता साथियों, आपको याद रखना है कि जहां आपका डर समाप्त हो गया वहां से ही आपका विकास शुरू हो गया। साथियों, अगर जीवन में कुछ अलग करना आप चाहते हैं तो परिचित रास्तों से बाहर निकलना ही होगा। पहला कदम छोटा हो सकता है, लेकिन वही कदम भविष्य की सबसे बड़ी सफलता का नींव बनेगा। ऐसे में आइए हम सब मिलकर आज से ही संकल्प लेते हैं कि हम डर से नहीं अपने सपनों से संचालित होंगे। साथियों, हम चुनौतियों से भागेंगे नहीं, उनका सामना करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का साहस करता है ना दोस्तों, वही अपने जीवन की नई दिशा और नई पहचान बनाता है। याद रखिए दोस्तों कि सपने देखने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सपनों के लिए अपनी सुविधा छोड़कर आगे बढ़ने वाले बहुत ही कम लोग हैं, और वही लोग इतिहास रचते हैं। जी हाँ साथियों, तो इन्हीं बातों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, और बातें भी मेरी आपसे आज ढेर सारी रही साथियों। तो मैं विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाती हूँ यहाँ पर एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यही समाप्त होता है। जैसा कि आज इस कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातें की श्रोता साथियों, हमने देखा कि किस प्रकार से जब हम कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन वही जब हम अपने सुरक्षित वातावरण यानी कि कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं तो हमें बेचैनी से होने लगती है, हमें समस्याएं बड़ी लगने लगती है श्रोता साथियों। तो इसलिए इन समस्याओं से डरिए मत श्रोता साथियों, बल्कि इनका सामना कीजिए और एक सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिए। इन्हीं उम्मीदों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए?
0: एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
1: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
0: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें। महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि डर के बावजूद आगे बढ़ना ही साहस का असली अर्थ है।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ श्रोता साथियों, अक्सर लोग सोचते हैं कि बहादुर वही होता है जिससे कभी डर नहीं लगता, लेकिन सच यह है कि डर हर इंसान को लगता है।
0: जी जी।
1: फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग डर के कारण रुक जाते हैं जबकि कुछ लोग उसी डर का सामना करके आगे बढ़ते हैं। यही असली साहस है। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि डर क्यों लगता है, डर के क्या कारण है और उससे कैसे निकला जा सकता है और कैसे छोटे छोटे कदम हमें बड़ी मंजिल तक पहुँचा सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो बातें हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से आज ढेर सारी करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना पहले उस दस्तूर को निभा ले और श्रोता साथियों को यहाँ पर एक प्यारा सा गीत सुनवा दे हम।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले बता ही चुके हैं कि आज हमारे बीच में बातचीत का एक नया विषय जुड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं डर के बावजूद आगे बढ़ना ही साहस का असली अर्थ होता है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, हम देखते हैं कि जीवन में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कभी डर महसूस न हुआ। अंजलि जी, डर एक स्वाभाविक भावना है जो हमें किसी खतरे, अनिश्चितता या चुनौती का अभ्यास कराती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि परीक्षा का डर हो गया, असफलता का डर हो गया, लोगों की आलोचना का डर हो गया, नई शुरुआत या भविष्य की चिंता हो गई। साथियों, ये सभी डर जो है वो जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन जीवन में सफल वही व्यक्ति होता है जो डर के कारण रुकता नहीं है, बल्कि डर को स्वीकार करते हुए भी आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं।
1: जी जी।
0: अक्सर लोग ये सोचते हैं कि साहसी व्यक्ति वह होता है जिसे कभी डर नहीं लगता, लेकिन अंजलि जी, वास्तविक तौर पर देखा जाए तो इसकी जो वास्तविकता है वो बिल्कुल अलग है।
1: बिल्कुल,
0: एक साहसी व्यक्ति का डरना न ही इसकी पहचान है, बल्कि डर के बावजूद सही दिशा में कदम बढ़ाना एक साहसी व्यक्ति की पहचान होती है। जब कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों का सामना करता है, साथियों, अपने डर पर नियंत्रण रखता है, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, तभी उसका साहस असली रूप में दिखाई देता है।
1: जी हाँ कशिश, डर एक स्वाभाविक भावना है, हमें संभावित खतरे से बचाने का काम करता है।
0: जी,
1: लेकिन जब यही डर हमें सही काम करने से रोकने लगे, नए अवसर अपनाने से रोकने लगे या अपने सपनों को पूरा करने से रोकने लगे, तब यह हमारी प्रगति में बाधा बन जाता है।
0: जी जी।
1: गाँव हो या शहर, बच्चा हो या बुजुर्ग, किसान हो या छात्र, हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में डर मौजूद होता है। हम अगर बात करें कि किन किन बातों से हमें डर लगता है, तो असफल होने से हम डरते हैं, लोग हमारी आलोचना करेंगे ये हमें डर रहता है, नई शुरुआत करने से बहुत सी बार हमें डर लगता है, आर्थिक नुकसान का डर रहता है, परीक्षा का डर, नौकरी या व्यवसाय में जोखिम का डर, इसी के साथ हम देखते हैं कि परिवार की जिम्मेदारियों का डर, अपनी बात खुलकर रखने का डर, और इन डरों के कारण कई लोग अपनी प्रतिभा को कभी पहचान ही नहीं पाते। श्रोता साथियों, साहस का मतलब यह नहीं है कि हमें डर नहीं लगता।
0: जी जी।
1: साहस का मतलब है कि डर को स्वीकार करना और उसके बावजूद सही दिशा में कदम बढ़ाना। अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा से डरते हुए भी मेहनत करता है तो वह साहसी है। अगर कोई किसान मौसम की अनिश्चितता के बावजूद नई तकनीक अपनाता है तो वह भी साहसी है। अगर कोई महिला साहस की बाधाओं के बावजूद शिक्षा या रोजगार की ओर कदम बढ़ाती है तो वह भी साहस है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि डर श्रोता साथियों हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार यह हमें सावधान रहने की प्रेरणा भी देता है और गलत कदम उठाने से रोकता भी है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अंजलि जी, जब यही डर हमारी प्रगति में बाधा बनने लगे और हमारे आत्मविश्वास को कम कर दे, हमारे प्रयास करने की जो क्षमता है उसे रोक दे, तब उसे जीतना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है।
1: जी हाँ।
0: जो व्यक्ति अपने भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। दोस्तों, इतिहास ऐसे कई अनेक उदाहरणों से भरे पड़े हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी हार नहीं मानी।
1: बिल्कुल।
0: अगर हम उदाहरण के तौर पर जाने महात्मा गांधी जी को, तो दोस्तों उन्होंने अनेक कठिनाइयों और अंग्रेजी शासन के अत्याचारों का सामना किया।
1: जी जी।
0: फिर भी सत्य और अहिंसा के मार्ग से वे पीछे नहीं हटे। वहीं रानी लक्ष्मीबाई जी ने भी अपने राज्य और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अद्भुत वीरता दिखाई। श्रोता साथियों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों का पीछा किया और देश के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति वे बने। इन सभी महान व्यक्तियों ने अंजलि जी भय को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया और अपने लक्ष्य को स्पष्ट किया।
1: बिल्कुल कशिश, हर डर अपने साथ एक सीख लेकर आता है। तैयारी करने की सीख, सावधानी रखने की सीख, खुद को बेहतर बनाने की सीख और धैर्य रखने की सीख। अगर हम डर को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक मान लें, तो वही डर हमारी ताकत बन सकता है।
0: बिल्कुल।
1: जब हम डर से भागते हैं श्रोता साथियों, तो आत्मविश्वास कम होता है, अवसर हाथ से निकल जाते हैं, पछतावा बढ़ता है, मन में नकारात्मक सोच बढ़ने लगती है।
0: बिल्कुल।
1: जीवन में ठहराव आ जाता है और धीरे धीरे इंसान अपनी क्षमता पर ही संदेह करने लगता है। कहना चाहेंगे कि जब हम डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं श्रोता साथियों, तो इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, अनुभव मिलता है, नई सीख मिलती है, गलतियों में सुधार होता है और इसी के साथ कशिश सफलता मिलने की संभावनाएं भी कई गुना बढ़ जाती है। हर छोटी जीत हमारे अंदर एक नया विश्वास पैदा करती है। मान लीजिए कि किसी किसान ने पहली बार नई खेती की, तकनीक अपनाई, अपनाने का फैसला लिया। शुरुआत में कशिश उसे डर था कि अगर फसल खराब हो गई तो क्या होगा।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन उसने जानकारी ली, विशेषज्ञ से सलाह ली और सोच समझ कर शुरुआत की। परिणाम अच्छा आया। अगर वो सिर्फ डर कर ही रह जाता तो शायद कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए कहते हैं कि डर को छोड़कर निरंतर प्रयास करना ही हमारी सफलता का सबसे अच्छा रहस्य है।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से बातचीत कर ही रहे हैं, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना साथियों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत सुनवा दें हम।
1: जी बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बहुत अच्छे विषय पर बातचीत कर रहे हैं,
1: जी हाँ।
0: यही श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगी कि कई बच्चे मंच पर बोलने से डरते हैं। पहली बार आवाज कांपती है, दूसरी बार थोड़ा बेहतर हो पाता है, तीसरी बार आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अगर वे पहली बार के डर के कारण रुक जाए तो वे कभी अच्छे वक्ता नहीं बन सकते। इसी तरह युवाओं को भी नई पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर से डरना नहीं चाहिए।
1: जी हाँ।
0: कहना चाहेंगे कि आज गांव में अनेक महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़ रही हैं। शुरुआत में उन्हें लोगों की बातों का डर था, बाहर निकलने में झिझक थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने हुनर को पहचान लिया। आज वही महिलाएं कशिश अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही है। कह सकते हैं कि डर पर जीत पाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसके कुछ आसान से उपाय हैं, जैसे कि अपने डर को पहचानना है, डर से भागना नहीं है, डर का सामना करना है, पूरी तैयारी करनी है, छोटे छोटे लक्ष्य बनाने हैं, सकारात्मक लोगों के साथ हमें अपना समय बिताना है और हर छोटी सफलता का सामना करना है।
1: बिल्कुल।
0: असफलता से सीख लेनी है और खुद की तुलना दूसरों से नहीं करनी है। कहते हैं श्रोता साथियों कि कई महान लोगों ने सफलता से पहले अनेक असफलताएं देखी हैं। अगर वे डर कर रुक जाते तो दुनिया उन्हें कभी नहीं जान पाती। याद रखिए कि असफलता अंत नहीं बल्कि अगली सफलता की तैयारी है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी। और साहस जो है वो जन्मजात गुण नहीं होता, बल्कि इसे अभ्यास और अनुभव से विकसित किया जा सकता है।
0: बिल्कुल।
1: इसके लिए दोस्तों व्यक्ति को अपने लक्ष्य स्पष्ट रखने चाहिए, सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए।
0: जी हाँ।
1: साथ ही छोटी छोटी चुनौतियों का सामना करना चाहिए, जैसे कि आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन और निरंतर अभ्यास से धीरे धीरे भय कम होने लगता है और साहस बढ़ जाता है। क्योंकि दोस्तों डर जो है वो जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है।
0: जी जी।
1: लेकिन उसे अपनी कमजोरी बनने देना उचित नहीं है। जो व्यक्ति अंजलि जी भय के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है वही सच्चा साहसी व्यक्ति कहलाता है।
0: बिल्कुल।
1: और दोस्तों सफलता उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनका डर कर सामना करना सीखते हैं। इसलिए हमें सदैव ये याद रखना चाहिए कि साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं बल्कि डर के बावजूद सही मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ना होता है।
0: जी
1: और यही जीवन की सफलता और आत्मविकास का मूल मंत्र है अंजलि जी।
0: जी हाँ कशिश, यदि परिवार बच्चों युवाओं का मनोबल बढ़ाए, उनकी गलतियों पर केवल डांटने के बजाय समझाएं तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। परिवार का विश्वास किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी ताकत होता है।
1: जी हाँ।
0: हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए श्रोता साथियों जहाँ लोग गलती करने से न डरे, नई सोच, नए प्रयोग, नए प्रयासों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो व्यक्ति कोशिश करता है उसका सम्मान होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं बनता, हर सफलता के पीछे कई छोटे छोटे साहसी कदम होते हैं।
1: जी हाँ।
0: हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही बड़ी उपलब्धियों की शुरुआत है।
1: बिल्कुल।
0: जब भी कशिश हमें डर लगे तो हमें खुद से एक सवाल पूछना है कि अगर मैं आज डर के कारण रुक गया तो क्या भविष्य में मुझे इसका पछतावा होगा। यदि उत्तर हाँ है तो समझ लीजिए कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। डर रहेगा लेकिन आपका विश्वास उससे भी बड़ा होना चाहिए। कह सकते हैं कि जीवन में ऐसे अनेक मोड़ आएंगे जहां परिस्थितियां कठिन होगी, रास्ते अनजान होंगे, मन में असमंजस्य होगा।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे समय में कशिश निर्णय यह नहीं होता कि डर है या नहीं, बल्कि यह होता है कि हम उस डर को अपने भविष्य का मालिक बनने नहीं देते हैं या मालिक बनने देते हैं या नहीं। जो व्यक्ति हर चुनौतियों को सीखने का अवसर मानता है वही धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है।
1: बिल्कुल।
0: साहस किसी विशेष व्यक्ति का गुण नहीं है दोस्तों, बल्कि यह हर इंसान के भीतर छिपी हुई शक्ति है। इसे जागने के लिए केवल पहला कदम उठाना ही जरूरी होता है। जब अपने डर का हम सामना करते हैं कशिश, तब हमें अपनी वास्तविक क्षमताओं का एहसास होता है।
1: बिल्कुल।
0: यही अनुभव हमें दूसरों के लिए प्रेरणा देता है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है।
1: जी हाँ।
0: आज हम यह संकल्प ले सकते हैं कि हम डर से भागेंगे नहीं बल्कि समझदारी, तैयारी और आत्मविश्वास के साथ उसका सामना करेंगे, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कठिन रास्तों पर भी उम्मीद का दीपक जलाए रखते हैं।
1: बिल्कुल।
0: याद रखिए कि डर हमें रोक सकता है, लेकिन हमारा साहस हमें आगे बढ़ाता है और यही आगे बढ़ना जीवन की सबसे बड़ी जीत होती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। साथी युवा साथियों और श्रोता साथियों, भय पर विजय ही आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी होती है। जब व्यक्ति अपने किसी एक डर पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसके भीतर एक नए आत्मविश्वास का संचार होता है अंजलि जी।
0: जी जी,
1: यह आत्मविश्वास उसे भविष्य की बड़ी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। और साथियों, प्रत्येक छोटी सफलता व्यक्ति को यह विश्वास दिलाती है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो,
0: जी जी,
1: निरंतर प्रयास और धैर्य से उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसलिए साथियों, भय पर विजय केवल एक समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि यह व्यक्तित्व के समग्र विकास की शुरुआत होती है।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि अधिकांश लोग असफल होने के डर से नए कार्य करने का साहस नहीं जुटा पाते अंजलि जी, क्योंकि वे सोचते हैं कि यदि वे असफल हो गए तो लोग उनका उपहास करेंगे या उनकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन वास्तव में बात तो यह है कि साथियों की असफलता सफलता की यात्रा का एक आवश्यक पड़ाव होता है। संसार के अधिकांश सफल व्यक्तियों ने अनेक बार असफल होने के बाद ही तो महान उपलब्धियां प्राप्त की है। इसलिए असफलता से डरने के बजाय उसे सीख लेकर आप आगे बढ़े, यही आपकी बुद्धिमानी होगी।
0: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर बैठे संदेह, भय और हिचकिचाहट से होती है। हर नया कदम अनिश्चितता लेकर आता है, लेकिन यही अनिश्चितता हमें अनुभव, समझ और परिपक्वता भी देती है।
1: बिल्कुल।

0: हम केवल इस डर से अपने सपनों को टालते रहेंगे कशिश कि कहीं असफल न हो जाए तो शायद हम कभी यह जान ही नहीं पाएंगे कि हम वास्तव में क्या कर सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: याद रखिए कि साहस का मतलब जोखिम को नजरअंदाज करना नहीं बल्कि सही जानकारी, सही तैयारी और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है।
1: बिल्कुल,
0: जब कोई व्यक्ति अपने डर के बावजूद पहला कदम उठाता है तो वह केवल अपनी मंजिल की ओर नहीं बढ़ता बल्कि अपने भीतर छिपे आत्मविश्वास भी जगाता है।
1: जी जी,
0: यही आत्मविश्वास आगे चलकर कठिन परिस्थितियों में भी उसे टूटने नहीं देता।
1: जी
0: श्रोता साथियों, हमारे समाज को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो चुनौतियों से घबराने के बजाय समाधान खोजने का प्रयास करें। ऐसे युवा जो नए विचारों को अपनाएं, ऐसी महिलाएं जो अपनी पहचान बनाने का साहस रखें, ऐसे किसान जो सीखने और बदलाव के लिए तैयार रहें, और ऐसे बच्चे जो प्रश्न पूछने, नई चीजें सीखने और अपनी प्रतिभा को निखारने से न डरें।
1: बिल्कुल,
0: जब एक व्यक्ति साहस दिखाता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार, समुदाय और आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं।
0: बिल्कुल,
1: और जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि गीत संगीत का भी दस्तूर है कार्यक्रम के माध्यम से, तो दोस्तों को यहाँ पर क्यों ना एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवाएं।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम में बातचीत का विषय काफी महत्वपूर्ण हमारा आपके साथ जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं कि डर के बावजूद आगे बढ़ना ही साहस का असली अर्थ है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, जैसा कि गीत से पहले हम असफलता और भय का सफलता से क्या संबंध है ये जान पाए थे, यही अगर बात बताएं श्रोता साथियों कि साहस समाज में सकारात्मक परिवर्तन कैसे लेकर आता है,
1: बिल्कुल,
0: तो इतिहास इस बात का साक्षी है। अंजलि जी, के समाज में जितने भी बड़े परिवर्तन हुए हैं उनके पीछे साहसी लोगों का ही योगदान रहा है। साथियों, जिन्होंने अन्याय, भेदभाव, रूढ़ियों और कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई, वे कठिनाइयों और विरोध से अवश्य गुजरे थे, परंतु उन्होंने अपने उद्देश्यों को कभी नहीं छोड़ा। यदि वे भय के कारण पीछे हट जाते अंजलि जी, तो समाज आज भी अनेक बुराइयों से मुक्त न हो पाता। इसलिए ऐसा बताया जाता है कि साहस केवल व्यक्तिगत गुण नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का आधार भी है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि हमारे समाज को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो चुनौतियों से घबराने के बजाय समाधान खोजने का प्रयास करें।
0: जी,
1: ऐसे युवा जो नए विचारों को अपनाएं, ऐसी महिलाएं जो अपनी पहचान बनाने का साहस रखें, ऐसे किसान जो सीखने और बदलाव के लिए तैयार रहें, और ऐसे बच्चे जो प्रश्न पूछने, नई चीजें सीखने और अपनी प्रतिभा को निखारने से न डरे। जब एक व्यक्ति साहस दिखाता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार, समुदाय और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। इसलिए आज का संदेश केवल इतना नहीं है कि डरिए मत, बल्कि यह है कि डर को समझिए, उससे सीखिए और उसे अपनी प्रगति की सीढ़ी बनाइए।
0: बिल्कुल,
1: हर सुबह अपने आप से कहिए कि मैं हर चुनौती का सामना धैर्य, विश्वास और मेहनत से करूंगा, क्योंकि जीवन उन्हीं का साथ देता है जो परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते बल्कि अपने हौसलों से नए रास्ते बनाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि हमें निरंतर प्रयास करते रहना है, हर दिन अपने कल से बेहतर बनाने की कोशिश करना है। हो सकता है कि मंजिल तक पहुंचने में समय लगे, लेकिन जो व्यक्ति डर के बावजूद चलना नहीं छोड़ता, उसके कदम एक दिन सफलता की कहानी अवश्य लिखते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी। साथी श्रोता साथियों, जीवन में अनेक अवसर ऐसे भी आते हैं जब व्यक्ति को कठिन से कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। भय की स्थिति में मनुष्य अक्सर भ्रमित हो जाता है और सही निर्णय लेने में संकोच करता है। अंजलि जी,
1: जी जी।
0: वहीं जो साहसी व्यक्ति होता है वह परिस्थितियों को शांत मन से सोचता है, विश्लेषण करता है और संभावित परिणामों पर ही विचार करता है, साथ ही उचित निर्णय लेने का प्रयास करता है। साथियों, यही गुण उसे दूसरों से अलग पहचान दिलाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का युग तेज प्रतिस्पर्धा का युग है, नई तकनीकों और निरंतर बदलती परिस्थितियों का युग है। ऐसे समय में केवल ज्ञान या प्रतिभा पर्याप्त नहीं है श्रोता साथियों, नए अवसरों को अपनाने, नए विचार प्रस्तुत करने, अपने अधिकारों की रक्षा करने और परिवर्तन के साथ स्वयं को ढालने के लिए साहस भी जरूरी है।
1: जी,
0: ऐसे में अंजलि जी, जो व्यक्ति जोखिम उठाने से नहीं घबराता वह नई संभावनाओं का लाभ उठाकर जीवन में आगे बढ़ता है।
1: जी हाँ कशिश, एक छोटे से गाँव में सीमा नाम की लड़की रहती थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी लेकिन लोगों के सामने बोलने से बहुत डरती थी।
0: जी,
1: स्कूल में जब भी भाषण, कविता या किसी प्रतियोगिता का नाम आता तो सीमा का दिल तेजी से धड़कने लगता। उसे लगता कि अगर मैं भूल गई तो, अगर सब लोग हंसने लगे तो, इसलिए वो बार बार अपना नाम वापस ले लेती थी। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि जिला स्तर की भाषण प्रतियोगिता होने वाली है। शिक्षिका ने पूरे विश्वास के साथ सीमा का नाम भेज दिया। यह सुनकर सीमा घबरा गई। उसने घर जाकर माँ से कहा, मैं नहीं जाऊंगी,
0: बिल्कुल
1: मैं सबके सामने बोल ही नहीं सकती। माँ मुस्कुराई और उसे खेत की ओर ले गई। वहां एक छोटा सा आम का पौधा हवा में झूल रहा था। माँ ने पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि यह पौधा कभी बड़ा पेड़ बन पाएगा? सीमा बोली, हाँ क्यों नहीं। माँ ने कहा, इसे भी तो तेज धूप, बारिश, आंधियों का डर लगता होगा।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अगर यह डर कर बढ़ना ही छोड़ दे तो क्या फिर फल देगा? नहीं, यह हर मौसम का सामना करता है, इसलिए एक दिन मजबूत पेड़ बन जाता है। माँ की बात सीमा के दिल में उतर गई। अगले दिन उसने प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी और रोज आईने के सामने बोलने का अभ्यास करती।
0: जी,
1: फिर अपने छोटे भाई के सामने, फिर कभी पड़ोसियों की दो महिलाओं के सामने। शुरुआत में उसकी आवाज कांपती थी लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ने लगा। प्रतियोगिता का दिन आ गया। मंच पर जाते समय उसके हाथ पैर कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उसने एक पल के लिए आंख बंद की और माँ की बात याद की। मजबूत पेड़ बनने के लिए आंधियों का सामना करना पड़ता है।
0: बिल्कुल।
1: उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। शुरुआत में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसका डर कम हो गया। उसने पूरा भाषण आत्मविश्वास से पूरा किया। जब परिणाम घोषित हुआ तो सीमा पहले स्थान पर नहीं आई, उसे तीसरा स्थान मिला। कुछ बच्चों ने कहा, अरे पहला इनाम भी नहीं मिला। लेकिन सीमा मुस्कुराई और बोली, आज मेरी सबसे बड़ी जीत ट्रॉफी नहीं, मेरा डर का हार हुआ है।
0: बिल्कुल।
1: अब मुझे पता है कि मैं आगे और बेहतर कर सकती हूँ। कुछ महीनों बाद सीमा फिर प्रतियोगिता में उतरी और इस बार उसने पहला स्थान हासिल किया।
0: जी।
1: तो श्रोता साथियों, ये कहानी हमें सीख देती है कि डर होना कमजोरी नहीं। कमजोरी तब है जब हम डर के कारण कोशिश ही छोड़ दें। साहस का अर्थ डर का खत्म हो जाना नहीं, बल्कि डर के साथ भी सही दिशा में कदम बढ़ाते रहना। और जो व्यक्ति पहला कदम उठा लेता है, वही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी। साथी श्रोता साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि साहस केवल शारीरिक शक्ति का नाम नहीं है, बल्कि मानसिक दृढ़ता का भी प्रतीक है।
1: जी जी।
0: कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना, निराशा से बाहर निकलना, सकारात्मक सोच बनाए रखना और बार बार प्रयास करते रहना मानसिक साहस के ही लक्षण है। यही गुण व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी टूटने नहीं देते साथियों, और अंत में सफलता की ओर ले जाते हैं। अंजलि जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज के युवाओं के सामने शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाएं, करियर और सामाजिक अपेक्षाएं जैसी अनेक

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जाना,
1: यही
0: श्रोता साथियों आपको कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगी कि डर, अगर डर के आगे हमने बहुत सारी चीज़ों को नहीं सोचा तो हम देखेंगे कि हम डर कर असफल हो जाएंगे।
1: जी जी,
0: जीवन की जो लड़ाई है वो हमारे डर से ही है, क्योंकि बहुत सी बार हम कुछ भी काम शुरू करते हैं तो पहले हमें अंदर से घबराहट होती है, हम सोचते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे।
1: जी जी।
0: तो ये जो डर है उससे बड़ा हमें हमारा आत्मविश्वास रखना है, और जब हम डर से बड़ा आत्मविश्वास रखते हैं तो हमारे कार्य जो है वो सफल हो जाते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां अवश्य होंगी, लेकिन गलतियों से सीख लेकर ही हम हमारे जीवन में कई बड़े परिवर्तन ला सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा, क्योंकि साहस जो है वो हमारा एक व्यक्तित्व का ऐसा गुण है जो हमें साधारण से असाधारण बना देता है। श्रोता साथियों, भय जीवन का स्वाभाविक हिस्सा जरूर है, लेकिन जो व्यक्ति अपने डर को अपनी प्रगति में बाधा नहीं बनने देता वही सच्चे अर्थों में विजेता कहलाता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में संकल्प लेना चाहिए अंजलि जी कि वह कठिनाइयों से भागेगा नहीं बल्कि उनका सामना करेगा।
0: जी हाँ।
1: यही दृष्टिकोण श्रोता साथियों से सफलता, सम्मान, आत्मविश्वास और जीवन की वास्तविक उपलब्धियों तक पहुँचाता है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जीवन में सफलता, सम्मान और आत्मसंतोष केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त होते हैं जो अपने भय को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी शक्ति बनाने का प्रयास करते हैं।
0: जी हाँ।
1: साथियों, डर जीवन का स्वाभाविक अपरिहार्य हिस्सा जरूर है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे कभी भय का अनुभव न हुआ हो। अंतर केवल इतना है अंजलि जी कि कुछ लोग भय के कारण अपने कदम रोक देते हैं जबकि कुछ लोग उसी भय को चुनौती मानकर आगे बढ़ते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और यही अंतर एक साधारण व्यक्ति और एक असाधारण व्यक्ति का निर्माण करता है।
0: जी हाँ कशिश, जीवन की यात्रा में ऐसे क्षण बार बार आते हैं जब हमें दो रास्तों में से एक रास्ता चुनना होता है। एक रास्ता आसान लगता है जहाँ हम अपने डर के कारण रुक जाते हैं, दूसरा रास्ता कठिन होता है जहाँ चुनौतियां तो होती हैं लेकिन आगे बढ़ने का अवसर भी नहीं मिल पाता।
1: बिल्कुल।
0: आगे बढ़ने का अवसर भी वही मिलता है।
1: बिल्कुल।
0: इतिहास गवाह है कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत किसी छोटे से साहसी निर्णय से हुई है। इसलिए हमें यह समझना होगा दोस्तों कि डर कोई दीवार नहीं है बल्कि एक ऐसी परीक्षा है जो हमारे धैर्य, विश्वास और संकल्प को परखती है।
1: बिल्कुल।
0: सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती बल्कि निरंतर प्रयास, सीखने की इच्छा और कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक बने रहने से मिलती है। जब हम अपने मन में यह विश्वास पैदा कर लेते हैं कि हर अनुभव हमें कुछ सिखाएगा, तब असफलता भी हमें निराश नहीं करती बल्कि अगले प्रयास के लिए तैयार करती है। यही सोच व्यक्ति को सामान्य से असाधारण बनाती है। श्रोता साथियों, हम अपने बच्चों को भी यह शिक्षा दें कि गलती करना हार नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है।
1: बिल्कुल।
0: युवाओं को नए अवसर को अपनाने के लिए प्रेरित करें, महिलाओं के आत्मविश्वास को सम्मान दें और समाज में ऐसा माहौल बनाएं जहां लोग बिना भय के अपनी प्रतिभा को निखार सके।
1: जी जी।
0: जब हर व्यक्ति भीतर के डर पर जीत हासिल करेगा तभी हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा समाज और आत्मविश्वास और प्रगति की दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे।
1: जी हाँ।
0: आज हमें यह निर्णय लेना होगा कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हम अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ें। हम हर चुनौती का सामना धैर्य, मेहनत और विश्वास के साथ करें।
1: बिल्कुल।
0: जीवन उन लोगों को हमेशा नई मंजिल तक पहुँचाता है जो रुकने के बजाय चलते रहने का साहस रखते हैं।
1: जी हाँ।
0: याद रखिए दोस्तों कि हौसलों की उड़ान हमेशा डर की सीमाओं से आगे जाकर ही आसमान को छू पाती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हो चुकी हैं और अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल।
1: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे कार्यक्रम का पता हम हमारे साथियों को बता दें।
0: बिल्कुल। तो लिख लीजिए श्रोता साथियों हमारे कार्यक्रम का पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001।
1: जी हाँ।
0: और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: नमस्कार।
1: साथी दोस्तों, आपको छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है। तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, आप भी हमारे कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं, आप भी आपकी फरमाइश के गीतों को सुनना चाहते हैं, तो आप भी आपकी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, अब हम हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जनकपुरी सहारनपुर से। फिल्म का नाम है दिल से, गीत के बोल हैं छल छैया छैया। इस गीत की फरमाइश करता है जोन डिकिस्टो, रोजी डिकिस्टो, पर डिकिस्टो, विलिची डिकिस्टो। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जौनपुर से, इशाद अहमद अंसारी, कामरानी इशाद, अरमानी इशाद, नवीद इशाद, अजाता बुसम जी। बनारस से जुड़ रही मास्टर खिल्लू परवीज, बेगम इमराज नाथ, नवाजिक शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे गंजुड़वारा उत्तर प्रदेश से, मास्टर खिल्लू परवीज, बेगम इमराज नाथ, नवाजिक शेख और दानिश शेख। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बनी रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भागवत से। फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है, गीत के बोल हैं आंख है भरी भरी। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्र देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, मानुषानु, बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं दुर्गा कॉलोनी हांसे से राजू मिलगानी, सुभाष मिलगानी, बबीता मिलगानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। इस गीत के अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ से दीपक खटक, प्रमिला जी खटक। चंद्रनगर सहारनपुर से जुड़ रहे हैं सुरेश डोमिन, सालिनी जी डोमिन। लाहौर से जुड़ना चाह रहे हैं डोली नेहा और प्रभा नेहा जी। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं आंख है भरी भरी। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।
1: पीके भी जो मुस्कुराए वही तो समाने को जीत पाए।

श्रोता साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है रायगढ़ बिहार से। फिल्म का नाम है रंग। गीत के बोल ही, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है उमाराज, दीपक उमा, रमेश उमा, अरविंद उमा, कमल जी उमा, जेल रोड खड़वा से जुड़ना चाह रहे हैं दुर्गा कुमारी, सपना कुमारी, राकेश ताई जी। इस गीत के अनुरोध करता है डुमराव से लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती, स्टार मोहम्मद समी जी। चंद्रनगर सहारनपुर से जुड़ रहे हैं महेंद्र यादव, दीप्ति यादव, यामिनी जी यादव और नरेंद्र जी यादव। इस गीत के अनुरोध करता है महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रीतेश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे बक्सर शहर से फातिमा राज, बीबी अंसारी, डब्ल्यू जी अंसारी और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया। तो आइए साथियों, सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। इस गीत को आवाज़ दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। तो आइए साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को।

श्रोता साथियों, अभी हमने कुमार सोनू जी और अलका जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है रघुवीर नगर दिल्ली से। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। गीत के बोल हैं, परदेसी परदेसी जाना नहीं। इस गीत की फरमाइश करता है दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से, मास्टर विठल सुरेशी, सुषमा सुरेशी, परिधि सुरेशी, मायराजी सुरेशी। इस गीत के अनुरोध करता है धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। जलालाबाद वेस्ट से जुड़ना चाह रहे हैं सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जी। इसी बीच जुड़ना चाह रही हैं अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका नमन, गुरकीरत, सिमरत, मन्नत और गुरशब्द सिंह राहुल। इस गीत के अनुरोध करता है दिल्ली से राज खोरवाल, रानी खोरवाल और प्रकाश जी खोरवाल। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा श्रोता साथियों, आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाघ रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पुराना तालाब डोराव सी। फिल्म का नाम है मोहरा। गीत के बोल हैं टिप टिप बरसा पानी। इस गीत की फरमाइश करता है वलीउल्लाह अंसारी, अस्मानाज अंसारी, शबनम बानो। जेल रोड बक्सर से जुड़ रहे हैं राज एडिया अंसारी, फातमा नाज। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं क्षतीश अनेजा, विमला जी अनेजा। इस गीत की अनुरोध करता है सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव, अभिषेक नामदेव, अपनम जी नामदेव। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, संजयोगिता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल रश्मि, सृष्टि बन्नी, आरिफ शिशोरिया, दिनेश जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं टिप टिप बरसा पानी। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाघ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मस्तानपुरा से। फिल्म का नाम है आशा। गीत के बोल हैं, शीशा हो या दिल टूट जाता है। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना जी भगत। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चेतनी मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना और हिदांजी खुराना। इस गीत की अनुरोध करता है राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोड़ानी, अर्चनाताई गोड़ानी, प्रणय प्रसिद्धि, हीरामन शेडी, प्रतिभाजी गोड़ानी और महेश राम टेके जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं भागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर न्यूतन जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में है।

श्रोता साथियों, अभी हमने लता जी की आवाज में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, शीशा हो या दिल टूट जाता है। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भद्रावती से। फिल्म का नाम है अनाड़ी, गीत के बोल हैं, क्या मौसम आया है। इस गीत की फरमाइश करता है अब्दुल लोहेवाला, शाहिदा शेख, शाहिल जी शेख और अब्दुल जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं मुंगी से बाबा साहेब कणकर, साखरबाई कणकर, परमेश्वरी रोहिणी, श्रावणी ईश्वरी। कणकर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं सलार पलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन और केसरुद्दीन जी। मराठवाड़ा से जुड़ रहे हैं समयद मशरूम, साइना हसन, अगजानाजिया, आफिया इब्राहिम और सदाम जी। जौनपुर से जुड़ना चाह रहे हैं इरशाद अहमद अंसारी।

श्री कामरान इर्शाद, अरमान इर्शाद, नवेद इर्शाद, अजरत अबू समझी बनारस से जुड़ रहे हैं। मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नूरिन अंसारी, आफिया परवीन जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, क्या मौसम आया है। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, वाग रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भाटापारा छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है बेवफा, गीत के बोल हैं मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। इस गीत की फरमाइश करता है सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, आनंद राठौड़, श्रीमती गिरिजा जी राठौड़, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, कुमारी अंकिता जोशी, बेबी विदई जोशी। खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं अब्दुल गफ्फार डावर जी। मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं जेवंती जी केवट और जगतपुर बक्सर से जुड़ना चाह रहे हैं अब्दुल गफ्फार डावर जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं सनावत से मोहम्मद सूफियान, मोहम्मद हासिम, मोहम्मद साहिक जी और बब्बू डब्बू जी। भीड़ शहर महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं नंदकिशोर घटे, साक्षी घटे, जय श्री घटी, रामनिवास अग्रवाल, धनजी बिट्टू, बीपी कुतलेश जी। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। फिल्म का नाम है अजनबी। इस गीत को आवाज़ दी है कुमार सोनू जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को।

दोस्तों इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है दोस्तों कानपुर से। फिल्म का नाम है साजन, गीत के बोल है तुमसे मिलने की तमन्ना है। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं लखनलाल स्वाम स्वरूप जी, अभिषेक वर्मा जी, हेमंत टेलर, जोश चौहान, अजित कुमार, मलका खान, मनोज कुमार, अजय पटेल जी, राकेश पटेल जी और राकेश कुमार जी। इसी बीच श्रोता साथी हैं जो और भी इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं, अनुरोध करता जुड़ रहे हैं, धनपुरा से जुड़ना चाह रहे हैं श्रोता साथी शबीर परवाना जी, विक्रम सिंह, सुरेश नायक जी, राम प्रसाद गोस्वामी जी, महावीर देवीलाल जी, राजाराम कुमार जी, अजय कुमार, श्यामलाल, रामस्वरूप जी, संदीप जैन, मेघराज मीणा जी। इसी बीच घाटोल से जुड़ रहे प्रेम नारायण जी, संतोष कुमार, प्रमोद कुमार, मनोहर दास जी, राकेश प्रजापति जी, हर्ष मीणा जी, मेघराज मीणा जी, श्यामलाल जी और राजा कुमार जी, देवीलाल, महावीर जी और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। श्रोता साथी जुड़ रहे हैं श्रीरामपुर महाराष्ट्र से है एड नासिर शेख नाजन नासिर, शाजिद शाहिद गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मिखाइल मुजावर जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं तुमसे मिलने की तमन्ना है। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था और इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। साथियों, अगली फरमाइश का गीत बोरवट से आया है। फिल्म का नाम है प्यार जिंदगी है। गीत के बोल हैं, मैं चाहता हूँ तुझो तुझको दिलो जान की तरह। इस गीत को आवाज़ दी है साथियों अभिजीत जी और अलका याग्निक जी ने। फरमाइश करता बोरवट से जुड़ रहे मनोज कुमार जी, रामेश्वर जी, नरेंद्र कुमार, नरेश कुमार, गजेंद्र कुमार जी। इसी बीच हमारे और भी श्रोता साथी रायबरेली से जुड़ रहे हैं, मेघराज मीणा, संतोष कुमार जी, साबिर परवाना जी, हेमंत टेलर जी, हरदेव कुमार जी, जसवंत कुमार, घनश्याम दास जी। बिहार से बड़ौदिया से हैं कलेश नीनामा जी और मुकेश पांडे, सतीश पांडे, कैलाश नीनामा जी, पूनम गौतम, शैलेंद्र कुमार, दिलीप कुमार, लालचंद प्रजापति जी, अर्जुन नीनामा, विजय जैन, दिलीप कुमार जी, ऋषिकेश जोशी जी, हरिमोहन जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं गंजुटवारा से शमशिल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु अंसारी, कलीम अंसारी और कह सकते हैं श्रोता साथी और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं। दोस्तों, पाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, धनेश तिवारी, सावन नायक, अंकिता जोशी, वेदई जोशी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, मैं चाहता हूँ तुझको दिलो जान की तरह।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है श्रोता साथियों बागपत उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है आपको बताना चाहूंगी। गीत के बोल हैं श्रोता साथियों, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, और फिल्म का नाम है साजन। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं आसिफ अली खान, मोमिन अनास, मुस्कान, सादिक अली खान, सारिक अली खान। इसी बीच हमारे और भी श्रोता साथी सहारनपुर से जुड़ रहे हैं, जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पल डिकेस्टो, विलिस डिकेस्टो जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, जुड़ रहे हैं जौनपुर से इरशाद अबद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, अजरा तबस्सुम। बनारस से जुड़ना चाह रहे हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरिन आसना, मोहम्मद केफ अंसारी, आफिया परवीन जी। गंजुडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाथ, नाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नामदेव जी। और भी श्रोता साथी हैं जो जुड़ रहे हैं, आपको नाम बताना चाहूंगी श्रोता साथियों, छत्तीसगढ़ कोरबा से हैं लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, माला शानू, बन्नू, बबन मुनहू, काना हरिप्रिया जी। तो आइए साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश के गीत आई है श्रोता साथियों दुर्गा कॉलोनी हांसी से। फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम। गीत के बोल हैं तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती है। फरमाइशकर्ता जुड़ रहा है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। इसी बीच हमारे श्रोता साथी और भी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। नाम बताना चाहूँगी श्रोता साथियों, भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं दीपक खटक, प्रमिला खटक, सहारनपुर से सुरेंद्र डोमेंद्र, सोनाली डोमेंद्र, बालो से डोली मिन्हास, प्रभा मिन्हास। और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। रायगढ़ बिहार से हैं उमा राज, शफी उमा, दीपक उमा, रमेश उमा, अरविंद उमा और कमल उमा जी। खंडवा से दुर्गा कुमारी, सपना राकेश ताई, डुमराव से लालू बाबू दीवाना, दिव्या भारती जी, महेंद्र यादव, दीप्ति यादव, यामिनी यादव, नरेंद्र यादव जी। और भी श्रोता साथी महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं परभणी से रुपेश संगे, महेश प्रिगेश, प्रीतेश संगे, पूरा संगे परिवार। और भी दोस्त हैं बक्सर बिहार से हैं सफरुद्दीन अंसारी, खातून अंसारी, असरम अकरम, अलसम अंसारी जी, फातिमा राज जी, बेदी अंसारी और डब्ल्यू अंसारी जी। और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। नाम बताना चाहूंगी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं मेरठ से अनिल जैन, सैम जैन, मुस्कान मास्टर, जीवीएम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन। तो आइए दोस्तों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती है।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। साथियों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी। फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है श्रोता साथियों, उत्तर प्रदेश सहारनपुर से। फिल्म का नाम है पैडमैन। गीत के बोल है, आज से तेरी सारी खुशियाँ मेरी हो गई। इस गीत को आवाज़ दी अरिजीत सिंह जी ने और फरमाइशकर्ता जुड़ रहे सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राधा नामदे, अभिषेक नामदे, अर्पणा नामदेव जी और भी दोस्त जो जुड़ रहे हैं पुराना तालाब डुमराव से। वलीउल्ला अंसारी, अजमानाज अंसारी, शबनम बानो जी बक्सर से, इजराज अंसारी, खातून अंसारी, फातिमा नाज अंसारी चंडीगढ़ से, सतीश अनेजा, विमला अनेजा जी पटेल नगर दिल्ली से हैं, राजेश सेन, सुरेखा सेन जी हरियाणा से, रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नमन गुरकिरत, सिमरन मदरत और गुरसिद्ध सिंह राहुल, विजेंद्र कुमार जयजान। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी निमित आहूजा जी और भी हमारे दोस्त जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। धनौरी तेलीवाला से हैं निशाद सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू और भी दोस्त हैं। वसीम महाराष्ट्र से हैं, मास्टर विठल सुरोसे, सुषमा सुरोसे, परिधि सुरोसे, मायरा सुरोसे जी। दिल्ली से हैं जफर मोहम्मद, फलक नाज, बेबी आलिया शेख, गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं ये। इसी बीच हमारे और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। साथ ही जुड़ रहे हैं पस्तानपुरना पुन्ना जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा चेतन, सुलोचना भगत। बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल, रुचिता खुराना जी और भी दोस्त जुड़ रहे हैं। अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, सैयद न्यूसू, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, राम भाव दांदले। बाटापारा छत्तीसगढ़ से है सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, दनिश तिवारी, सावन नायक, अंकिता जोशी, विदही जोशी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, आज से तेरी सारी खुशियां मेरी हो गई। आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। आपसे हमारी फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम आपकी फरमाइश में कुछ नई फरमाइश गीतों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल और स्वागत करती हूं आपका हमारे आज के सायकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। साथ ही श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। आज दिनांक 7 मई 2026 वार गुरुवार का दिन है। श्रोता साथियों, संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। अगला कार्यक्रम शुरू होगा आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज। इसे लेकर आएंगे प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 5:30 पर। इसके बाद हम रुख करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन की ओर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6 बजे। फिर अगला कार्यक्रम शुरू होगा इसी कड़ी में किसान भाइयों का खेतीबाड़ी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगी अंजलि पारेशर और इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। दोस्तों, कार्यक्रमों की रूपरेखा में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी अंजलि पारेशर। अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मनीषा पटेल यानी कि मेरे साथ में, और मेरे साथ होगी हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसके बाद आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे ठीक 8 बजे। दोस्तों, मनोरंजन की होगी पूरी भरमार, तभी आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत ठीक 8:30 पर। श्रोता साथियों, इन्हीं नगमों के बाद हम रुख करेंगे गजलों की ओर। सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को रात्रि 9 से 10 बजे तक। तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

0: आज के सुविचार।
1: उसके भोजन से फल संग्रहित होता है, क्यों? इसलिए ताकि वृक्ष उसे स्वयं खा सके? नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वो भूखे जीवों में बांट सके। अब आप पूछेंगे कि इसमें वृक्ष का क्या लाभ? लाभ है, क्योंकि जो बांटता है वो मिटता नहीं। जो फल ये जीव खाते हैं वो उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष। उसकी जाति, उसका गुण, उसकी मिठास अमर हो जाती। इसलिए स्मरण रखिएगा, अमीर होने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। राधे राधे। भय, भय सबको होता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य। वास्तविकता में मनुष्य भय को अपने साथ लेके ही जन्म लेता है। तो इस भय से भय कैसा? यदि भय बुरा भाव होता तो क्या इसे हम अपने साथ लेके जन्म लेते हैं? वास्तविकता में भय हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए, जीवन जाने का भय आपसे स्वयं की सुरक्षा करवाने का प्रयास करता है। अपमान का भय सदाचार की ओर बढ़ाता है। किसी प्रिय को खो देने का भय उसके लिए कर्तव्य पालन करने को प्रेरित करता है। किंतु यह भय बुरा तब हो जाता है जब आप इसे अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं, इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर पाते। इसलिए यदि इस भय को उपयोग में लाना है, आपको स्वयं इस भय के ऊपर हावी हो जाना होगा। तो तोड़ दीजिए भय की सीमाएं, अपनी आत्मा को छोड़ के किसी और के समक्ष सर मत झुकाइए। और स्मरण रखिए, जब अंधकार से डरना छोड़ दोगे तभी दीपक बनकर प्रकाश दे पाओ। राधे राधे।
0: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनू अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली में जावू है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़ वो काटो नती जय वरे अधिकार हंग्र अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बोनो हक जानो हक मांगो जमीन का कागज माते अपनु नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
1: भाई ने बोनो आप इकारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह या आपड़े ने कितनी शांति मिले है जीनी हवा में आपड़े हाल रह ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो होवे आज नाना कदम है ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन
4: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके
3: जल्दी थकान थावी शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी श्वास फूलवू आ सब एनीमिया ना लक्षण है
4: होवे भाईन बोनू आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे
3: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है
4: होपे एनीमिया तक की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल पत्तेदार सब्जी गुड़ बाजरा तिल नींबू ने संतरा गोभी तरबूज आंवला टमाटर नु सेवन करवो सुवे
3: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज को। साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर,
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
0: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। जैसा कि श्रोता साथियों, हम जब भी कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो आपसे बातचीत का एक नया विषय हमारे साथ बना रहता है। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसे ही विषय को लेकर हम बात कर रहे हैं। जागृति जी, आज हम जिस विषय को लेकर बात करने वाले हैं हमारे युवा साथियों से, वो सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि विद्यार्थी, परिवार और हर समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण विषय है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, बातचीत का विषय है दृष्टि से ज्यादा कहीं अहम है दूरदृष्टि।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आंखें केवल वर्तमान को देखती है लेकिन दूरदृष्टि भविष्य को गढ़ती है। तो आज हम जरूर बात करेंगे दृष्टि से ज्यादा कहीं अहम है दूरदृष्टि को लेकर, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं यह गीत।
0: जी बिल्कुल, तो श्रोता साथियों आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं, दृष्टि से ज्यादा अहम है दूरदृष्टि। जैसा कि हमारे पास आंखें हैं जागृति जी, इसलिए हम अपने सामने की चीजों को देख सकते हैं, लेकिन क्या केवल देख लेना ही पर्याप्त है श्रोता साथियों?
1: बिल्कुल।
0: क्या जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ वर्तमान को देखना काफी होता है क्या? इसका उत्तर है शायद नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल दृष्टि ही नहीं बल्कि दूरदृष्टि भी जरूरी होती है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि दृष्टि हमें जागृति जी वर्तमान का दृश्य दिखाती है, लेकिन जो दूरदृष्टि होती है वो हमें भविष्य की दिशा दिखाती है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि जीवन में हर निर्णय का प्रभाव भविष्य पर पड़ता है। अगर हम केवल आज के लाभ को देखकर निर्णय ले लें तो भविष्य में कठिनाइयां आ सकती है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अगर हम दूरदृष्टि से निर्णय लें तो वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी सुरक्षित हो जाता है। श्रोता साथी, दूरदृष्टि व्यक्ति को समय का सही उपयोग करना सिखाती है, संभावित संकटों के लिए तैयार रहती है, अवसरों की पहचान कराती है, नेतृत्व क्षमता विकसित करती है, साथ ही समाज और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देने योग्य बनाती है।
0: बिल्कुल।
1: हम कह सकते हैं कशिश कि इतिहास ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां दूरदृष्टि ने राष्ट्रों और समाजों का भविष्य बदल दिया।
0: बिल्कुल।
1: महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्र भारत का सपना केवल अंग्रेजों से आजादी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आत्मनिर्भर, नैतिक और स्वावलंबी भारत की कल्पना की। उनका सच्चा स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता का संदेश था।
0: बिल्कुल।
1: हम बात करें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने वर्षों पहले विकसित भारत का सपना देखा था। उन्होंने युवाओं से कहा कि बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करो। उनकी दूरदृष्टि आज भी करोड़ों युवाओं को प्रेरित करती है।
0: जी हाँ जागृति जी, हम कह सकते हैं कि दृष्टि हमें बताती है कि आज हमारे सामने क्या है, लेकिन दूरदृष्टि ये समझाती है कि आज का निर्णय आने वाले वर्षों में हमारे जीवन को किस दिशा में लेकर जाएगा। जैसा कि युवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर होता है और इसी समय लिए गए निर्णय भविष्य की नींव बनते हैं।
1: जी हाँ।
0: ऐसे में यदि कोई युवा केवल आज की मौज मस्ती, तत्कालिक सफलता और दूसरों की तुलना करने में लगा रहे तो वह भविष्य के बड़े अवसर खो देगा।
1: बिल्कुल।
0: वहीं जो युवा दूरदृष्टि रखते हैं वह अपने हर छोटे कदम को बड़े लक्ष्य से जोड़कर देखते हैं। जागृति जी,
1: जी हाँ,
0: आज के समय में हम अक्सर सोशल मीडिया पर लोगों की सफलता को देखते हैं और सोचते हैं कि हमें तुरंत सफलता क्यों नहीं मिल जाती। लेकिन दोस्तों, हम ये नहीं देखते कि उस सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत है, धैर्य है और योजना होती है। ऐसे में दूरदृष्टि हमें सिखाती है कि बड़ी उपलब्धियां एक दिन में नहीं मिलेगी बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे सही प्रयासों से ही बनेगी।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन में दूरदृष्टि का बहुत महत्व होता है। हर व्यक्ति के जीवन में हम देखें कि दूरदृष्टि बहुत जरूरी है।
0: जी जी।
1: अगर विद्यार्थी की बात करें तो अगर केवल परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उसकी सोच सीमित रहती है, लेकिन अगर वो अपने ज्ञान, कौशल और व्यक्तित्व विकास पर ध्यान देते हैं तो उसका भविष्य और अधिक उज्ज्वल बनता है।
0: जी हाँ।
1: इसी के साथ हम बात करें किसान की, तो अगर केवल इस मौसम की फसल के बारे में सोचता है किसान तो वो सीमित लाभ प्राप्त करेगा, लेकिन अगर वो जल संरक्षण, आधुनिक खेती और मिट्टी की उर्वरता पर ध्यान देगा तो आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित कर सकता है।
0: बिल्कुल।
1: इसी प्रकार श्रोता साथी, परिवार, व्यवसाय, शिक्षा और स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में दूरदृष्टि सफलता की कुंजी है।
0: बिल्कुल।
1: भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। अगर युवा केवल वर्तमान की सुविधाओं में उलझ जाए कशिश, तो देश का भविष्य भी प्रभावित होता है।
0: जी हाँ।
1: हमारे युवा साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि दोस्तों, नई तकनीकों को आप जरूर सीखें, कौशल विकास पर ध्यान दीजिए, केवल नौकरी खोजने के बजाय अवसरों का निर्माण करिए।
0: बिल्कुल।
1: पर्यावरण संरक्षण को अपनाइए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, साथ ही समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी को निभाइए, क्योंकि

0: आज जो युवा दूरदृष्टि के साथ मेहनत करेगा वही कल समाज का नेतृत्व करेगा।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों से बातचीत का विषय हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है और हम बात कर रहे हैं कि दृष्टि से ज्यादा कई अहम होती है दूरदृष्टि।
0: बिल्कुल,
1: तो दूरदृष्टि के महत्व को हम जान ही रहे हैं, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना साथियों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दे हम।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। हमारी बातें चल रही थी दृष्टि से ज्यादा कहीं अहम है दूरदृष्टि को लेकर। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जाना दृष्टि और दूरदृष्टि के अर्थ के बारे में, दूरदृष्टि क्यों जरूरी है, साथ ही इतिहास में दूरदृष्टि के क्या क्या उदाहरण है, व्यक्तिगत जीवन में दूरदृष्टि का क्या महत्व है और हम युवाओं के लिए दूरदृष्टि का क्या महत्व, ये भी हम जान रहे थे। यही जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण और दूरदृष्टि का क्या महत्व है।
1: जी हाँ।
0: तो कशिश, अगर हमारे पूर्वजों ने पेड़ नहीं लगाए होते तो आज हमें शुद्ध हवा भी नहीं मिल रही होती। आज यदि हम जल संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां पानी की गंभीर समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, दूरदृष्टि हमें यही सिखाती है कि प्रकृति केवल हमारे लिए नहीं है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की भी धरोहर है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए हमें आज से ही, अगर हमने पहले से नहीं किया हो तो हम आज से भी वर्षा जल संचयन कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं, प्लास्टिक का कम उपयोग करें, साथ ही ऊर्जा की बचत करें। ये कार्य अगर हम करेंगे तो ये कार्य दूरदृष्टि का परिचय है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हमारे युवा साथियों को हम ये भी बताना चाहेंगे कि साथियों, दूरदृष्टि का मतलब ये भी नहीं है कि हम केवल भविष्य की ही चिंता करते रहें और वर्तमान को भूल जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आज को इस तरह जीना है कि आने वाला कल बेहतर बन सके।
0: बिल्कुल।
1: वर्तमान में पूरी मेहनत करना, भविष्य को ध्यान में रखकर सही दिशा चुनना साथियों, यही सच्ची दूरदृष्टि है। आज हम देखते हैं कि युवाओं के सामने ढेर सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि प्रतिस्पर्धा, मानसिक दबाव, सोशल मीडिया का प्रभाव और समय की कमी। जागृति जी,
0: बिल्कुल,
1: इन सबके बीच वही युवा आगे बढ़ेंगे जो हर परिस्थिति में धैर्य रखेंगे, सीखते रहेंगे और जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय सोच समझकर कदम उठाएंगे। क्योंकि साथियों, जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जहां आसान रास्ता तुरंत लाभ देता हुआ हमें दिखाई देता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन वही रास्ता आगे चलकर श्रोता साथियों नुकसान भी पहुंचा सकता है। वही दूसरी ओर कठिन रास्ता शुरुआत में मुश्किल लगता है लेकिन भविष्य में वही स्थायी सफलता देता है। इसलिए श्रोता साथियों, दूरदृष्टि हमें सही रास्ता चुनने की समझ देती है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि एक अच्छा नेता केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान नहीं करता बल्कि भविष्य की चुनौतियों का भी अनुमान लगाता है।
1: बिल्कुल।
0: चाहे कोई विद्यालय का प्रधानाचार्य हो, ग्राम पंचायत का सरपंच हो, किसी संस्था का प्रमुख हो या देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति।
1: जी हाँ।
0: दूरदृष्टि के बिना प्रभावी नेतृत्व संभव नहीं है। श्रोता साथियों, दूरदृष्टि वाला नेता निर्णय लेते समय केवल आज नहीं देखता बल्कि आने वाले वर्षों का भी ध्यान रखता है। आज हम देख रहे हैं कशिश की कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको हम AI कहते हैं, डिजिटल तकनीक, रोबोटिक्स और इंटरनेट ने पूरी दुनिया को बदल दिया है।
1: बिल्कुल।
0: जो लोग समय रहते इन तकनीकों को सीख रहे हैं वे भविष्य के अवसरों का लाभ उठा रहे हैं। दूरदृष्टि का अर्थ केवल तकनीक अपनाना नहीं है दोस्तों, बल्कि उसका जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करना भी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, ऐसे में हमारे युवा साथियों से हम यही कहना चाहेंगे कि उन्हें हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए।
0: जी हाँ।
1: कि जो काम वे आज कर रहे हैं, क्या वह काम उन्हें 5 साल बाद भी गर्व का एहसास करवाएगा? यदि श्रोता साथियों आपको उत्तर हाँ मिलता है तो आप समझ लीजिए कि दूरदृष्टि के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: जीवन में सपने देखना बहुत अच्छी बात है साथियों, लेकिन सपनों के साथ सही योजना, अनुशासन, मेहनत और धैर्य जोड़ देना ही दूरदृष्टि कहलाता है। यही गुण हमें भीड़ से अलग पहचान दिलाता है जागृति जी। ऐसे में श्रोता साथियों, दृष्टि हमें वर्तमान दिखाती है लेकिन दूरदृष्टि भविष्य गढ़ती है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए केवल ये मत देखिए कि आज आपके सामने क्या है, बल्कि ये भी सोचिए कि आज का आपका हर निर्णय आने वाले कल को कैसे प्रभावित कर रहा है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि सच्चा स्वराज केवल स्वतंत्रता का नाम नहीं बल्कि ऐसी सोच का नाम है जिसमें व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं ले, समाज के हित को प्राथमिकता दे और भविष्य के प्रति जिम्मेदार बने।
1: बिल्कुल।
0: जब प्रत्येक नागरिक दूरदृष्टि अपनाएगा तो गांव आत्मनिर्भर बनेंगे, युवा रोजगार सृजक बनेंगे, पर्यावरण सुरक्षित रहेंगे, समाज में सहयोग और विश्वास बढ़ेगा, साथ ही राष्ट्र अधिक सशक्त बनेगा।
1: जी हाँ।
0: यही सच्चे स्वराज की वास्तविक भावना है। हम कह सकते हैं श्रोताओं कि दूरदृष्टि जन्मजात नहीं होती बल्कि इसे विकसित की जा सकती है। इसके लिए नियमित अध्ययन करना होगा, अनुभवी लोगों से सीखना होगा, दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने होंगे, हर निर्णय के भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव विचार करने होंगे, समय का सदुपयोग करना होगा, साथ ही नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को तैयार रखना होगा और असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ना होगा।
1: जी हाँ जागृति जी, श्रोता साथियों, दूरदृष्टि व्यक्ति को परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि समाधान खोजने वाला बनाती है। समस्याएं हर किसी के जीवन में आती है साथियों, लेकिन दूरदृष्टि रखने वाला व्यक्ति केवल परेशानी नहीं देखता बल्कि उससे निकलने का रास्ता भी तलाशता है।
0: जी हाँ।
1: ऐसे में बिना पूरी जानकारी के लिए लिया गया फैसला कई बार आपके लिए गलत साबित हो सकता है। अगर आप श्रोता साथियों समझदार व्यक्ति हैं तो आप पहले उस निर्णय के बारे में सीखेंगे, फिर एक बेहतर निर्णय लेंगे।
0: बिल्कुल,
1: आज का आपका एक एक घंटा यदि सही दिशा में आप लगाएंगे तो आने वाले वर्षों में वही सफलता की मजबूत नींव बनेगा।
0: बिल्कुल कशिश, एक प्रेरक प्रसंग है जो हमारे श्रोता साथियों को हम सुनाना चाहेंगे। साथियों, एक नगर में दो कुम्हार रहते थे। पहला कुम्हार हर दिन उतने ही घड़े बनाता था जितने उसी दिन बिक जाए।
1: बिल्कुल,
0: वही दूसरा कुम्हार बरसात आने से पहले ही बड़ी संख्या में घड़े तैयार कर लेता था। कशिश, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। कुछ महीनों बाद हमने देखा कि बहुत भारी वर्षा हुई, मिट्टी गीली होने के कारण कोई नया घड़ा बना ही नहीं सक रहा था। पहले कुम्हार का काम बंद हो गया, जबकि दूसरे कुम्हार के पास पहले से तैयार घड़े थे।
1: बिल्कुल,
0: उसकी बिक्री बढ़ गई और पूरे नगर में उसकी प्रशंसा होने लगी। उसने मुस्कुराकर कहा कि मैंने केवल आज को नहीं देखा था, मैंने आने वाले कल को भी देखा था। और श्रोता साथियों, यही दूरदृष्टि का सबसे सरल उदाहरण है। यही दृष्टि हमें रास्ता दिखाती है, लेकिन दूरदृष्टि मंजिल तक पहुंचाती है। वर्तमान को समझना बहुत जरूरी है, परंतु भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लेना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जो व्यक्ति समाज और राष्ट्र दूरदृष्टि के साथ आगे बढ़ते हैं, वे समय की चुनौतियों को अवसर में बदल देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज आवश्यकता केवल देखने वालों की नहीं बल्कि भविष्य गढ़ने वालों की है। अगर प्रत्येक युवा अपने जीवन, समाज और राष्ट्र के प्रति दूरदृष्टि अपनाएगा तो भारत न केवल विकास करेगा बल्कि विश्व के लिए प्रेरणा भी बनेगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे युवा साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हो चुकी हैं और हमने जाना कि किस प्रकार से दृष्टि जो है वो वर्तमान का रास्ता हमें दिखा सकती है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन दूरदृष्टि जो है वो हमारे भविष्य को बेहतर बनाएगी। तो जैसा कि बातें हो चुकी है, समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत सुनवा दे हम।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं इस गीत को। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। भारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा बचपन। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर,
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर।
0: स्वीकार कीजिए साथियों हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: जी हां श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन को आज एक नए विषय के साथ में। आज हम बच्चों की पढ़ाई से जुड़े एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे कशिश, जो लगभग हर घर की कहानी बन चुका है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे ही स्कूल से बच्चा घर आता है और होमवर्क की बात होती है तो कई घरों में तनाव का माहौल बन जाता है।
0: जी
1: कोई
0: हाँ।
1: बच्चा कहता है कि मुझे होमवर्क नहीं करना, तो कोई रोने लगता है, तो कोई बहाने बनाने लगता है, तो कोई मोबाइल देखने की जिद करने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में माता पिता भी परेशान हो जाते हैं, कई बार डांट फटकार या गुस्से का सहारा लेने लगते हैं। लेकिन श्रोता साथियों, क्या हमने कभी यह सोचा कि आखिर होमवर्क बच्चों के लिए बोझ क्यों बनता जा रहा है?
0: बिल्कुल,
1: क्या वास्तव में समस्या होमवर्क में है या उसे करने के तरीके में है?
0: जी हाँ,
1: आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे।
0: बिल्कुल,
1: होमवर्क को बोझ नहीं बल्कि सीखने का सुनहरा अवसर कैसे बनाए।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो बातें ढेर सारी होंगी आज के इस कार्यक्रम में, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम गीत सुनवाएं।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय तो आपको बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं साथियों, कि हम बच्चों को बताएं कि होमवर्क बोझ नहीं होता बल्कि सीखने का अवसर होता है। जैसा कि अंजलि जी, गीत से पहले आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोता साथियों को बताई थी।
1: जी जी।
0: कि होमवर्क का उद्देश्य जो है वो बच्चों पर ज्यादा दबाव डालना नहीं होता, बल्कि बच्चों को सीखने का एक नया अवसर ये प्रदान करता है।
1: जी जी।
0: ऐसे में श्रोता साथियों, हमें बच्चों को ये बताना है कि वो होमवर्क को घर पर दोहराएं, समझें और अभ्यास करते रहें, क्योंकि जब बच्चा स्वयं अभ्यास करता है तब उसकी समझ मजबूत होती है अंजलि जी, और वह सीखी हुई बातों को लंबे समय तक याद भी रख पाता है। देखते हैं कि होमवर्क को सही दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथियों, यहाँ पर समस्या तब शुरू होती है जब होमवर्क केवल जिम्मेदारी या दबाव बन जाता है। कई बार बच्चे स्कूल से थके हुए घर लौटते हैं, घर पहुंचते ही उन्हें बिना आराम किए पढ़ने के लिए बैठा दिया जाता है।
1: बिल्कुल।
0: कुछ बच्चों पर तो अंजलि जी बहुत अधिक होमवर्क का दबाव होता है, तो कुछ बच्चों को तो ये पढ़ाई कठिन लगती है। ऐसे में श्रोता साथियों, उनके मन में होमवर्क के प्रति डर और नकारात्मक भावनाएं पैदा हो जाती हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल कशिश, यहाँ पर माता पिता की जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि वे हर समय केवल यह पूछते रहें कि होमवर्क पूरा हुआ या नहीं, इतनी देर क्यों लग रही है या जल्दी करो, तो बच्चा पढ़ाई को आनंद की जगह तनाव से जोड़ने लगता है।
0: बिल्कुल।
1: इसके बजाय माता पिता को यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को किस विषय में कठिनाई आ रही है। उसे डांटने की बजाय समझाना, उसके साथ बैठना और उसका मनोबल बढ़ाना बहुत अधिक प्रभावी होता है।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों, होमवर्क करने के लिए घर में एक शांत और व्यवस्थित वातावरण होना चाहिए। यदि आसपास टीवी चल रही हो, मोबाइल का शोर हो या बार बार व्यवधान आए, तो बच्चों का ध्यान भटकना स्वाभाविक है। इसलिए पढ़ाई के समय ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहाँ बच्चा एकाग्र होकर अपना कार्य पूरा कर सके। हमें बच्चों को यह भी सिखाना चाहिए कशिश, कि होमवर्क केवल कॉपी भरने का नाम नहीं है। यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आता तो उसे पूछना चाहिए। यदि कोई नया शब्द मिलता है तो उसका अर्थ जानने का प्रयास करना चाहिए। यदि किसी विषय में रुचि जगानी है तो उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी भी खोजनी चाहिए।
0: जी जी।
1: यही आदत बच्चों में जिज्ञासा और सीखने का आनंद विकसित करती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी। साथी श्रोता साथियों, आज के समय में जैसा कि तुलना भी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा दबाव बन गई है। कई माता पिता को हमने कहते हुए सुना है अंजलि जी, कि वे कहते हैं कि देखो, तुम्हारा दोस्त तो अपना होमवर्क पहले से ही पूरा कर लेता है। साथियों, ऐसी बातें बच्चों का आत्मविश्वास कम करती है। हर बच्चे की सीखने की गति अलग होती है, इसलिए तुलना करने के बजाय उसकी अपनी प्रगति की सराहना आपको करनी चाहिए।
1: जी हाँ।
0: साथ ही इसमें शिक्षकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है अंजलि जी। यानी कि यदि शिक्षक होमवर्क का उद्देश्य बच्चों को समझाएं, उनकी समय समय पर समीक्षा करते रहें और बच्चों के प्रयासों की सराहना करेंगे, तो बच्चे उसे और अधिक रुचि से करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, केवल गलतियां निकालने के बजाय सही प्रयासों की प्रशंसा करना भी जरूरी होता है। साथ ही होमवर्क को रोचक बनाने के लिए पढ़ाई के बीच बीच छोटे छोटे विराम भी दिए जा सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: कठिन विषय पहले और आसान विषय बाद में करने की योजना बनाई जा सकती है। समय का सही प्रबंधन बच्चों को तनाव से बचाता है और पढ़ाई को और भी आसान बनाता है अंजलि जी।
1: बिल्कुल कशिश, तो इस तरीके से कार्यक्रम में आज हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान रहे हैं कि होमवर्क को हमें बोझ नहीं समझना है बल्कि सीखने का अवसर बनाने की जरूरत है। तो ये बातें निरंतर आगे और भी कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों के साथ बनी रहेंगी।
0: जी।
1: लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले कशिश हमने ढेर सारी बातों को जाना ही कि किस तरीके से बच्चों के होमवर्क को हमें रोचक बनाना है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को पूरा दिन केवल पढ़ाई में ही नहीं बिताने देना चाहिए। उन्हें खेलने, परिवार के साथ समय बिताने, कहानी पढ़ने, अपनी रुचियों को पूरा करने का अवसर भी मिलना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: संतुलित दिनचर्या वाला बच्चा होमवर्क को अधिक उत्साह से करता है।
1: बिल्कुल।
0: हमें बच्चों को ये समझाना चाहिए कि होमवर्क केवल शिक्षक को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने के लिए हर दिन किया गया छोटा सा अभ्यास भविष्य में बड़े आत्मविश्वास और सफलता का आधार बनता है।
1: बिल्कुल।
0: जब बच्चा यह समझ लेता है कि पढ़ाई उसकी अपनी प्रगति के लिए है, तब वह होमवर्क को बोझ नहीं बल्कि सीखने का अवसर मानने लगता है।
1: जी जी।
0: इसलिए कहा जा सकता है श्रोता साथियों कि होमवर्क को लेकर बच्चों और माता पिता दोनों की सोच बदलने की आवश्यकता है। यदि घर में सहयोग, प्रोत्साहन, धैर्य और सकारात्मक माहौल होगा तो बच्चा पढ़ाई से नहीं भागेगा बल्कि सीखने में आनंद महसूस करेगा। यही आनंद उसे जीवन भर सीखते रहने की प्रेरणा देगा और शिक्षा को केवल अंकों तक सीमित नहीं रहने देगा।
1: साथ ही हम अंजलि जी अपने बच्चों को ये भी बताएं कि होमवर्क का वास्तविक उद्देश्य केवल कॉपी के पन्ने भरना या अगले दिन शिक्षक को दिखाना नहीं है। यह बच्चों को आत्मनिर्भर बनने, नियमित अभ्यास करने, समय का महत्व समझने और अपने सीख को मजबूत करने का अवसर देता है।
0: बिल्कुल।
1: यदि बच्चे ये समझ जाएंगे साथियों कि होमवर्क उनके विकास का एक साधन है न कि सजा का, तो पढ़ाई के प्रति उनका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल सकता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए जरूरत होमवर्क को खत्म करने की नहीं बल्कि उसे देखने और कराने के तरीकों को बदलने की है। अंजलि जी।
0: जी हाँ, यही श्रोता साथियों, अक्सर हम बच्चों से यह उम्मीद करते हैं कि वे हर काम पूरी तरह सही करें, लेकिन यह भूल जाते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में गलतियां होना स्वाभाविक है। यदि बच्चा किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है या होमवर्क में गलती करता है कशिश, तो उसे डांटने के बजाय समझने, सुधारने का अवसर देना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: जब बच्चों को यह विश्वास मिलता है कि गलती करने पर उनका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा बल्कि उन्हें सही दिशा दिखाई जाएगी, तब वे बिना डर के सीखने का प्रयास करते हैं और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
1: बिल्कुल।
0: ये भी याद रखना चाहिए श्रोता साथियों कि हर बच्चा अलग होता है। कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे धीरे समझता है, तो कोई लिखने में अच्छा होता है, तो कोई बोलकर अपनी बात बेहतर तरीके से व्यक्त करता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए बच्चों की तुलना करने की बजाय उनकी व्यक्तिगत क्षमता और सीखने की गति का सम्मान करना आवश्यक है। जब बच्चा अपने प्रयासों की सराहना महसूस करता है, तब वह पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि अपनी प्रगति का माध्यम मानता है।
1: जी हाँ अंजलि जी। साथी दोस्तों, माता पिता, शिक्षक यदि मिलकर बच्चों के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करेंगे जहाँ जिज्ञासा को प्रोत्साहन मिले, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता हो, प्रयासों की सराहना हो और

0: सीखने को अंकों से अधिक महत्व दिया जाए।
1: जी जी।
0: तो अंजलि जी, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा। होमवर्क तब केवल किताबों तक सीमित नहीं रहेगा साथियों, बल्कि बच्चों में अनुशासन, जिम्मेदारी, धैर्य, आत्मविश्वास के साथ साथ समस्या का समाधान खोजने जैसी जीवन भर काम आने वाली क्षमताओं का भी विकास करेगा।
1: जी हाँ।
0: ऐसे में हम अपने बच्चों को यह एहसास दिलाएं कि पढ़ाई किसी प्रतियोगिता में दूसरों को हराने के लिए नहीं है, बल्कि स्वयं को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने के लिए है। जब घर का माहौल सहयोग, विश्वास और प्रोत्साहन से भरा होगा, तब बच्चे बिना किसी डर के नई बातें सीखने का साहस करेंगे।
1: जी हाँ।
0: वे केवल अंजलि जी अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थी नहीं बनेंगे, बल्कि समझदार, जिज्ञासु और आत्मनिर्भर सीखने वाले भी बनेंगे।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हमारे श्रोता साथियों को हम कार्यक्रम के अंत में यही कहना चाहेंगे कि होमवर्क का असली महत्व उसकी मात्रा में नहीं, बल्कि उससे मिलने वाली सीख में छिपा होता है। यदि हम बच्चों को यह समझा दें कि हर अभ्यास उन्हें अपने सपनों के एक कदम और करीब ले जाता है, तो वे किताबों को बोझ नहीं बल्कि अपनी भविष्य का साथी मानेंगे।
0: बिल्कुल।
1: ऐसा बचपन केवल परीक्षा में ही नहीं, बल्कि जीवन की हर चुनौती में धैर्य, समझ और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। यही सीखने की सबसे बड़ी सफलता है और यही सच्चे बचपन की सबसे सुंदर पहचान भी है।
0: जी हाँ अंजलि जी। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं, और अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल।
0: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे साथियों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
1: जी हाँ।

0: दोस्तों इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ।
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेश्वर को।
1: नमस्कार।

0: બાઈનબોનું ગીત તો આયશું પૂરું, અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સબનું ઘણેમાન સ્વાગત કરા હું અમારે આજને કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જેમ કે ભાઈનબોનું ગીત કે પહેલા આપને વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હ કે જઈ વખત હંગ્ર હાથ મળીને એક હાથે કામ કરે હે તઈ વખત આપણી જે ફસલ હે ઈ અસલ હરતે થાય હે. તો આના વિશે માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ તકી જોડી રહી મનીષજી. તો સપ્તાહ કી પહેલા આપણે હામરી લાડાની વાત અને મોરે કર આપણી વાતે. સર નમસ્કાર.
1: નમસ્તે અંજલિજી.
0: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતી હું વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં.
1: आपका और वागड़ रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद.
0: सर जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम खेतीवाड़ी से जुड़ रहे हैं और आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है सांझे हाथ और सांझी फसल को लेकर. जानेंगे आज कार्यक्रम के माध्यम से हमारा जो वागड़ क्षेत्र है यहाँ पर जो आदिवासी समुदाय है वो किस तरीके से एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, उनकी जो परंपरा है वो किस तरीके से उनको उनकी खेती में और भी कई वार त्योहार होते हैं, बहुत सारे अलग परंपराएं जो होती हैं उनमें अगर सभी लोग एक साथ मिलकर चलते हैं तो किस तरीके से कार्य जो हैं वो सफलता से पूरे होते हैं. तो कार्यक्रम में आप सबसे पहले हम यही बताइए कि सांझे हाथ और सांझी फसल का क्या महत्व है.
1: तो किसान भाइयों, अगर हम सबसे पहले बात करें कि हमारा जो आज का विषय है सांझे हाथ और सांझी फसल, तो ये हमारे समुदाय की, हमारे वागड़ क्षेत्र के एकता की बात करते हैं. हमारे समाज में हमेशा से जो काम होते आए हैं वो मिलके होते आए हैं. कहीं भी कोई ज़रूरत होती है तब पूरा समुदाय, पूरा गांव या पूरा समाज मिलके उस गांव या उस परिवार की मदद करता है और वो मिलके काम करते हैं. तो यही परिकल्पना हमारी जो है उसमें कहीं ना कहीं स्वराज दिखाई देता है या स्वराज में ये दिखाई देना चाहिए.
0: जी हाँ.
1: तो हम इन सिक्के के दोनों पहलुओं को जब इधर से देखें या इधर से देखें तो इस सांझेपन में स्वराज है और स्वराज ही सांझेपन का दूसरा मतलब है. तो अगर हम बात करें खेत की तो हम देखते हैं कि खेत केवल अनाज नहीं उगाते, खेत रिश्ते भी उगाते हैं. अगर हम बात करें मिट्टी की तो मिट्टी केवल बीज नहीं संभालती, वो विश्वास भी संभालती है और संजोती है. इसी तरह से जब कई हाथ मिलकर धरती को सींचते हैं, संवारते हैं, तब फसल केवल किसान की नहीं पूरे समाज की होती है.
0: बिल्कुल.
1: अगर हम जब देखें कि सावन का महीना आता है, वैसे ही वागड़ की धरती, पहाड़ियाँ, इन पर हरियाली की वो एक पूरी चादर ओढ़ लेती है. प्रकृति का पूरा स्वरूप बदल जाता है.
0: जी जी.
1: हमारा राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र जिसे हम वागड़ कहते हैं, जंगलों में सागौन, महुआ, बांस, खाकरा, पलाश की नई पत्तियां और कोमल कोपले झूमने लगती हैं.
0: बिल्कुल.
1: सूखे पड़े नदी नाले, छोटी नदियां फिर से कलकल कर बहने लगती हैं. खेतों की मेड़ पर उगने वाली घास हमको ये बताती है कि धरती ने फिर एक नए जीवन को, एक विश्वास को, एक मेहनत को और सामूहिकता, अनेकता में एकता का मौसम फिर से लौटाया है.
0: बिल्कुल.
1: हमारे खेतों में हमारी मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर, उड़द, मूंग, तिल, मूंगफली और कई स्थानीय बिना उपजाई हुई फसलें जिनमें हमारा चीबड़ा, डांगरा, काचरा, रजन जैसी चीजें खेतों में दूर से ही देखी जा सकती हैं.

0: हर खेत में हमको कोई ना कोई परिवार काम करता हुआ, मेहनत करता हुआ दिखाई देता है।
1: बिल्कुल सर।
0: लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हमें यह समझ में आता है कि मेहनत किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। खेत में एक साथ कई हाथ काम कर रहे होते हैं, जिसमें पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और कई बार बच्चे भी छोटे छोटे कामों में परिवार का हाथ बटाते हैं।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आप हमें कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से ये बता रहे हैं कि सांझे हाथ और सांझी फसल का क्या महत्व है, तो यही अब मैं जानना चाहूंगी कि वागड़ की सबसे बड़ी ताकत क्या है और उसका क्या महत्व है।
0: ऐसे तो हमारे तीज त्योहार, खेत और गांव, ये हमारे वागड़ की सबसे बड़ी ताकत है। यदि हम देखें हमारी सामूहिकता को, तो ये सामूहिकता या साझापन केवल खेती तक सीमित नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है।
1: बिल्कुल।
0: जहां खुशियां भी साझा है, चुनौतियां भी साझा है और मेहनत भी साझा है।
1: बिल्कुल।
0: इसी साझेपन ने सदियों से हमारे आदिवासी समाज को कठिन परिस्थितियों में भी आत्मनिर्भर बनाए रखा है। अब क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार बहुत करीब आ रहा है, तो हम इसी को लेकर इस चीज को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो किसान साथियों, रक्षाबंधन का अर्थ केवल एक रिश्ता नहीं है। अगस्त का महीना एक और विशेष कारण से महत्वपूर्ण होता है। इस समय जो रक्षाबंधन का पर्व आता है, सामान्य रूप से इसे भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के त्योहार के रूप में देखा जाता है। लेकिन हमारे आदिवासी जीवन दर्शन में सुरक्षा का अर्थ केवल परिवार तक सीमित नहीं है। यहाँ रक्षा का भाव प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है। धरती जो हमारी माँ है, जंगल हमारे संरक्षक हैं और हम जंगलों के संरक्षक हैं। पानी हमारे जीवन का आधार है, तो बीज हमारे आने वाली पीढ़ियों की पूंजी है।
1: बिल्कुल।
0: और खेती हमारे संपूर्ण अस्तित्व का आधार है। इसलिए रक्षाबंधन का जो वास्तविक संदेश है, केवल इंसानों के बीच नहीं बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच भी एक अटूट संबंध जोड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: जिस प्रकार बहन का विश्वास भाई के हाथ पर बांधे जाने वाले धागे पर होता है, उसी तरह किसान बारिश से पहले बीज धरती को सौंपता है और ये विश्वास करता है कि ये मिट्टी, ये प्रकृति उसे कभी निराश नहीं करेगी।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने हमें बताया कि वागड़ क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी ताकत तीज त्योहार परंपरा के साथ साथ सामूहिकता भी है और किस तरीके से इनका महत्व है। यही सर अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आज भी खेतों में मिलकर काम करने की परंपरा को हम देखते हैं, और ये जो जिम्मेदारी है किस तरीके से परिवार की ही नहीं समाज की भी होती है।
0: बिल्कुल किसान साथियों, तो वागड़ की जो खेती है ये एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि जब खेत किसी का है तो जिम्मेदारी समाज की कैसे हुई, पर यही सबसे बड़ी खासियत है इस वागड़ के भील समुदाय की।
1: बिल्कुल।
0: वागड़ के अधिकांश किसान गांव में खेती केवल अपनी आर्थिक गतिविधि या लाभ के लिए नहीं करते हैं, बल्कि ये एक सामाजिक जीवन का केंद्र है। यहाँ खेतों में काम करते समय शायद ही आपको कोई अकेला दिखाई दे। यदि किसी परिवार में काम करने वाले कम हो, यदि किसी किसान की तबीयत खराब हो जाए, यदि किसी विधवा महिला के खेत की निराई का समय आ जाए, या लगातार बारिश के कारण जल्दी पूरा काम करना जरूरी हो, उस स्थिति में समुदाय खुद आगे आ जाता है।
1: बिल्कुल।
0: उनको कोई बुलावा नहीं भेजा जाता, उनकी कोई मजदूरी तय नहीं होती। समुदाय अपने औजार लेके जरूरतमंद किसान के खेत पे पहुंचकर उस काम को उस समय में पूरा कर देते हैं जिस समय में उस काम को होना चाहिए।
1: जी जी।
0: तो यहीं पे हम देखते हैं वागड़ में जो खेती है वो किसी परिवार की नहीं वरन पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है कि उस किसान के साल भर के अनाज की व्यवस्था होना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो यही अब आपसे मैं जानना चाहूंगी कि वागड़ के आदिवासी गांवों की एक विशेष पहचान क्या है जो सभी को पता होनी चाहिए।
0: बिल्कुल किसान भाइयों, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जहां हम साझेपन की बात कर रहे हैं, तो साझापन वागड़ के भील समुदाय की हर चीज में दिखाई देता है। अगर हम गाँव की बात करें तो हमारे गाँव की एक विशेष पहचान होती है, हमारा फलिया या पाड़ा। फलिया या पाड़ा की संस्कृति जहाँ पड़ोसी परिवार से भी बढ़ के होता है। फलिया केवल कुछ घरों का समूह नहीं है, ये एक जीवित सामाजिक व्यवस्था है।
1: बिल्कुल,
0: यहाँ हर परिवार दूसरे परिवार की खुशियों और कठिनाइयों में बराबर का भागीदार होता है। किसी घर में शादी हो, बीमारी हो, खेत में ज्यादा काम हो या बरसात के कारण फसल बचाने की जरूरत हो, चाहे वो फसल खेत में हो या खलिहान में हो, ऐसी जरूरत के समय पे उस फलिया या पाड़ा के लोग बिना बुलावे के उस किसान के साथ खड़े हो जाते हैं। और इसी फलिया संस्कृति ने सामूहिक मेहनत और अपनेपन को जिंदा रखा है।
1: बिल्कुल,
0: आज हम देखते हैं कि आधुनिक जीवन या समय में जहां व्यक्ति अकेला होता जा रहा है, वहीं वागड़ का फलिया या पाड़ा आज भी हमें ये याद दिलाता है कि विकास केवल संसाधनों से नहीं, संबंधों से होता है। तो यही वागड़ के आदिवासी गांव की एक और विशेषता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने वागड़ की विशेषता के बारे में बताया, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि इसमें महिलाएं सामूहिक खेती में क्या क्या भूमिका निभाती हैं।
0: जी किसान भाइयों, तो साझेदारी की सबसे मजबूत कड़ी अगर कोई है तो वो हमारी महिला किसान। यदि हम साझेदारी की आत्मा को देखना चाहते हैं तो वो महिला किसान है।
1: बिल्कुल,
0: जो सुबह घर संभालने से लेकर शाम तक खेतों में काम करना, पशुधन की देखभाल करना, बीजों को बचाना, बच्चों का पोषण सुनिश्चित करना, परिवार की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना,
1: बिल्कुल
0: ये सब एक महिला किसान की दैनिक जिम्मेदारी का या रोज के कामों का हिस्सा है। वो केवल मजदूर नहीं है, वो बीज की भी संरक्षक है।
1: बिल्कुल,
0: वो मिट्टी की पहचान करने वाली एक वैज्ञानिक भी है, वो पशुधन की देखभाल करने वाली प्रबंधक भी है। इस तरह से जो एक पूरा पारिवारिक ताना बाना है, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक की जितनी जरूरतें हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी एक महिला की होती है। तो ये परिवार की पोषण प्रबंधक तो है, और जब हम परिवार की बात करते हैं तो परिवार के सदस्य ही नहीं, उस परिवार में पाले जाने वाले पशुधन भी उस परिवार का हिस्सा होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और सबसे बढ़कर वह सामूहिक सहयोग की सबसे मजबूत आधारशिला होती है। तो इसी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि साझेदारी की जो सबसे मजबूत कड़ी है वो एक महिला है।
1: बिल्कुल, तो सर जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो किस तरीके से साझेदारी की भूमिका निभाती हैं, और अगर महिलाएं इस साझेदारी में प्रमुख हिस्सा न बने तो हम देखेंगे कि बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अंत में आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथी, हमारे जो किसान भाई बहन हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि भविष्य में भी यह जो परंपरा है वो ऐसे ही बनी रहे।
0: तो किसान साथियों, अंत में हम संदेश के साथ इसे खत्म करेंगे, पर अगर हम हमारे ताजे संबंधों की बात करें तो ऐसी और बहुत सी चीजें, परंपराएं, संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, जैसे हमारा हलमा धाड़, जो किसी व्यक्तिगत उद्देश्य या लाभ के लिए नहीं किए जाते, ये सब एक साझे प्रयास होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: पूरे समुदाय के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, न कि सिर्फ उस गांव के लिए। तो अंत में किसान साथियों, मैं यही कहूंगा कि आइए इस सावन और रक्षाबंधन पर केवल राखी का धागा ही नहीं, बल्कि हमारे जल, जंगल, जमीन, बीज, बहनों के सम्मान और साझी खेती के संकल्प को भी अपने जीवन से बांधें। क्योंकि यही वागड़ की पहचान है, यही हमारी साझा विरासत है और यही आने वाले कल की सबसे बड़ी आशा है।
1: बिल्कुल सर। तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: आपका, वागड़ रेडियो का और सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार।
1: બાઈન બનો જેમ કે આપણે આપણે વેસમી મનીષજી જોડે તક હતા ને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા તે કે ઘણા કાની વાતે વતાડી હે। આશા કરો હો કે આ હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ તકી સૂટો પડવાનો। તો સૂટો તો પડો પણ સાથે પહેલે હમરી લે એક ઓર ગીત મોરે પડો સૂટો।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनू अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली में जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जैवरे अधिकार हमरा अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बोनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है। जी हाँ, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट, और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर। स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वगर रेडियो 90.8।

0: स्तंभ पर।
1: साथियों लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है कि कम संसाधनों में हम बड़ा परिवर्तन किस तरह से कर सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: अंजलि, परिवर्तन हमेशा बड़े संसाधनों से नहीं बल्कि बड़े विचारों, मजबूत इच्छा शक्ति और सही दिशा में उठाए गए छोटे छोटे कदमों से आता है।
0: जी हाँ,
1: इतिहास गवाह है कि अनेक महान बदलाव सीमित संसाधनों के बावजूद हुए। जिस व्यक्ति या समाज ने उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करना सीख लिया, उसने असंभव लगने वाले लक्ष्यों को भी संभव बना दिया।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें बनी रहेंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं एक प्यारे से गीत को। तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारे श्रोता साथियों से बातचीत करने का विषय है, कम संसाधनों में हम बड़ा परिवर्तन किस तरह से कर सकते हैं।
1: जी जी।
0: तो साथियों, जैसा कि परिवर्तन कभी संसाधनों का मोहताज नहीं होता, बल्कि सोच, संकल्प और सामूहिक प्रयास का परिणाम होता है।
1: बिल्कुल।
0: ये वाक्य केवल प्रेरणा नहीं बल्कि जीवन का एक सत्य है। अक्सर हम ये मान लेते हैं अंजलि की किसी बड़े बदलाव के लिए बहुत अधिक धन, आधुनिक तकनीक या विशाल व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम इतिहास, समाज और अपने आसपास के जीवन को देखें तो पाएंगे कि सबसे बड़े परिवर्तन उन लोगों ने किए हैं जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद हार नहीं मानी।
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने जो उपलब्ध था उसी को अपनी ताकत बनाया और जो कठिन परिस्थितियों को अवसर में बदल दिया।
1: बिल्कुल जागृति जी, आज भारत आत्मनिर्भरता, नवाचार और जन भागीदारी की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे समय में श्रोता साथियों, कम संसाधनों में बड़ा परिवर्तन केवल एक विचार नहीं बल्कि विकास का प्रभावी मंत्र बन चुका है। चाहे कोई छात्र हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, शिक्षक हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, जागृति जी, हर व्यक्ति यदि अपने संसाधनों का सही उपयोग करे तो अपने परिवार, समाज और देश में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यही अब बात आती है कि परिवर्तन की शुरुआत सोच से होती है।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हर परिवर्तन की पहली सीढ़ी सकारात्मक सोच होती है। यदि मन में विश्वास हो कि परिवर्तन संभव है तो सीमित साधन भी पर्याप्त बन जाते हैं। इसके विपरीत यदि सोच नकारात्मक हो तो असीमित संसाधन भी व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं।
0: जी हाँ।
1: आज अनेक युवा हैं जागृति जी, जो छोटे छोटे विचारों से बड़े स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं। कई सामाजिक कार्यकर्ता बिना किसी बड़े आर्थिक सहयोग के शिक्षा, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है श्रोता साथियों कि परिवर्तन की वास्तविक शक्ति व्यक्ति की सोच से होती है।
0: बिल्कुल अंजलि, हमारे पास जो है उसका सही उपयोग करना ही सफलता की पहली शर्त है। अक्सर लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि उनके पास क्या नहीं है, जबकि सफल लोग इस बात पर काम करते हैं कि उनके पास क्या है। अगर किसी गांव में बड़ी फैक्ट्री नहीं है तो वहाँ की खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प या स्थानीय कला ही विकास का आधार बन सकती है।
1: जी जी।
0: किसी विद्यालय में आधुनिक सुविधाएं नहीं है तो एक समर्पित शिक्षक अपने ज्ञान और मेहनत से विद्यार्थियों का भविष्य बदल सकता है। यही संसाधनों के सदुपयोग का वास्तविक अर्थ होता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, सीमित संसाधन व्यक्ति को नए समाधान खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। यही नवाचार की शुरुआत है। जब समस्याएं अधिक होती है श्रोता साथियों और संसाधन कम, तब व्यक्ति अपनी रचनात्मक क्षमता जो है उसका उपयोग करने लगता है।
0: बिल्कुल
1: जागृति जी, आज देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां युवाओं ने कम लागत वाली मशीनें बनाई हैं, किसानों ने पानी बचाने की नई तकनीक अपनाई है और महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर आत्मनिर्भरता की मिसाल प्रस्तुत की है।
0: बिल्कुल।
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि नवाचार केवल तकनीक नहीं बल्कि सोचने का नया तरीका है।
0: जी हाँ अंजलि, हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति अकेले सीमित कार्य कर सकता है, लेकिन जब पूरा समाज साथ में आता है तो छोटे संसाधन भी बड़े परिणाम देते हैं। गाँव में हम देखते हैं कि श्रम दान से तालाबों का निर्माण होता है, विद्यालयों की मरम्मत होती है, सड़क निर्माण होता है, स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, वृक्षारोपण जैसे कार्य किए जाते हैं। ये सारे कार्य बिना बड़े बजट के सफल हुए हैं। जब लोग स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं तब परिवर्तन स्थायी बनता है, और यही सामुदायिक सहभागिता लोकतंत्र और सच्चे स्वराज की सबसे बड़ी पहचान है।
1: जी हाँ, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि ज्ञान ऐसा धन है जिसे कोई नहीं छीन सकता। शिक्षा व्यक्ति को सही निर्णय लेने की क्षमता देती है और सीमित संसाधनों में भी बेहतर जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। आज जागृति जी, डिजिटल माध्यम से शिक्षा पहले की तुलना में अधिक सुलभ हो गई है। एक मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से लाखों विद्यार्थी नई नई जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: यदि सीखने की इच्छा हो तो सीमित संसाधन भी पर्याप्त हैं।
0: जी हाँ अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि सीमित संसाधनों में हम बड़ा परिवर्तन किस तरह से कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी हमारे श्रोता साथियों के साथ में, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि परिवर्तन की शुरुआत सोच से किस तरीके से होती है, उपलब्ध संसाधनों का सही प्रयोग हमें कैसे करना है, साथ ही नवाचार और रचनात्मक सोच के महत्व के बारे में जाना, और ये भी हम जान पाए जागृति जी कि सामूहिक प्रयास से असंभव कार्य भी कैसे संभव हो जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ हम जान पाए शिक्षा सबसे बड़ा संसाधन है। यही अब बात आती है समय के सदुपयोग की। तो श्रोता साथियों, समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता।
1: जी हाँ।
0: जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। विद्यार्थी नियमित अध्ययन करे, युवा अपने कौशल का विकास करे, किसान नई तकनीकों की जानकारी ले और समाज सेवी लोगों के बीच जागरूकता फैलाए, तो ये सभी समय के सदुपयोग के उदाहरण होते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि। दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करने के बजाय स्वयं पहल करना परिवर्तन का सबसे प्रभावी मार्ग है।
0: बिल्कुल।
1: आत्मनिर्भर व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोज लेता है। अंजलि, आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर परिवार और आत्मनिर्भर युवा ही मजबूत राष्ट्र की नींव रखते हैं।
0: जी हाँ।
1: जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझता है तब पूरे समाज का विकास अपने आप होने लगता है। श्रोताओं, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी हमेशा बड़े अभियानों की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम सब मिलकर प्रति वर्ष एक पौधा लगाएं, वर्षा जल का संरक्षण करें, बिजली की बचत करें और प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे अंजलि, तो इसका प्रभाव पूरे देश पर दिखाई देता है।
0: जी हाँ।
1: एक परिवार द्वारा की गई छोटी सी बचत भी लाखों परिवारों के साथ मिलकर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है।
0: जी हाँ। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि भारत विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है, जैसा कि हम कार्यक्रम में हमेशा श्रोता साथियों से बातचीत करते रहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए परिवर्तन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी श्रोता साथियों युवाओं पर ही है। युवा नई तकनीक अपनाएं, सामाजिक समस्याओं के समाधान खोजें, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और जागरूकता फैलाएं, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दें और इसी के साथ जागृति जी स्वयं सेवा की भावना भी विकसित कर सकते हैं। यदि युवा केवल शिकायत करने के बजाय समाधान का हिस्सा बने तो देश की तस्वीर बदल सकती है।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ महिलाओं की सहभागिता भी जरूरी है, यानी कि श्रोता साथियों परिवर्तन की सबसे मजबूत आधारशिला महिलाएं हैं। आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लाखों महिलाएं छोटे छोटे व्यवसाय चला रही हैं, परिवार की आय बढ़ा रही हैं और समाज में नई पहचान भी बना रही हैं।
1: बिल्कुल।
0: कहना चाहेंगे कि कम पूंजी से शुरू हुए अनेक महिला उद्यम आज हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बन चुके हैं। इससे यह सिद्ध होता है श्रोता साथियों कि इच्छा शक्ति और परिश्रम संसाधनों की कमी को पीछे छोड़ सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि। भारत की आत्मा गांव में बसती है और अगर गांव आत्मनिर्भर बनेंगे तो देश स्वतः ही मजबूत होगा।
0: बिल्कुल।
1: श्रोताओं, जल संरक्षण, जैविक खेती, स्थानीय उद्योग, सामुदायिक रेडियो, ग्राम सभा की सक्रियता, स्वच्छता अभियान और डिजिटल शिक्षा, ये सारे प्रयास सीमित संसाधनों में भी ग्रामीण विकास का नया अध्याय लिख सकते हैं। और जब गांव मजबूत होते हैं अंजलि, तभी सच्चे अर्थों में राष्ट्र का विकास संभव होता है।
0: बिल्कुल।
1: सच्चा स्वराज केवल शासन व्यवस्था नहीं है बल्कि जिम्मेदार नागरिकता का नाम है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझता है, संसाधनों का सम्मान करता है और समाज के लिए कार्य करता है श्रोताओं, तभी वास्तविक स्वराज स्थापित होता है।
0: बिल्कुल।
1: कम संसाधनों में बहुत बड़ा परिवर्तन सच्चे स्वराज की भावना को मजबूत करता है अंजलि, और ये हमें सिखाता है कि विकास केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सब नागरिकों का कर्तव्य भी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, कम संसाधनों में बड़ा परिवर्तन केवल एक प्रेरक विचार नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक प्रभावी शैली है। यह हमें सिखाता है कि सफलता का आधार धन नहीं बल्कि दूरदृष्टि, परिश्रम, अनुशासन, नवाचार और सामूहिक प्रयास है।
1: बिल्कुल।
0: यदि हम उपलब्ध संसाधनों का सम्मान करें, समय का सदुपयोग करें, शिक्षा और कौशल को अपनाएं, पर्यावरण की रक्षा करें और समाज के साथ मिलकर कार्य करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। हम सभी को श्रोता साथियों, संसाधनों की कमी के लिए बहुत सारी चीजों के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो उपलब्ध है उसी से नए अवसर पैदा करने हैं।
1: जी हाँ।
0: हम अपने परिवार, गांव, शहर और देश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं, क्योंकि इतिहास उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने परिस्थितियों को दोष नहीं दिया बल्कि सीमित संसाधनों को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाकर समाज में नया परिवर्तन लाया है।
1: बिल्कुल अंजलि, इसलिए हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि कम संसाधनों में बड़ा परिवर्तन केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन जीने की ऐसी प्रेरणा है जो हमें ये सिखाती है कि बदलाव की शुरुआत बाहरी साधनों से नहीं

0: बल्कि भीतर के साहस, संकल्प और सकारात्मक सोच से होती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि आपने कहा था कि इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया वही समाज और देश के लिए प्रेरणा बने।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं, आपसे कहना चाहेंगे कि ये विषय और भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होती है, और अगर युवा ये संकल्प ले लें अंजलि कि वे शिकायतों के बजाय समाधान खोजेंगे, संसाधनों की कमी के बजाय अवसरों को पहचानेंगे और केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी कार्य करेंगे, तो भारत को विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त बनने से कोई नहीं रोक सकता।
1: बिल्कुल।
0: परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत, श्रोता साथियों, धन नहीं बल्कि जागरूक नागरिक, ईमानदार प्रयास और सामूहिक सहभागिता होती है। इसीलिए आपको कहना चाहेंगे कि परिवर्तन की मशाल हमेशा किसी बड़े महल से नहीं बल्कि एक छोटे से दीपक से जलती है।
1: जी हाँ।
0: जब हर हाथ जिम्मेदारी उठाएगा, हर मन सकारात्मक सोच को अपनाएगा और हर नागरिक अपने हिस्से का योगदान देगा अंजलि, तब सीमित संसाधन भी असीम संभावनाओं में बदल जाएंगे। और यही सच्चे स्वराज की भावना है, यही आत्मनिर्भर भारत का मार्ग है और यही उज्जवल भविष्य की सबसे मजबूत नींव है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए हम स्वयं बदले, समाज को बदले और मिलकर ऐसा भारत बनाए जहां संसाधनों की नहीं संकल्पों की पहचान हो।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें की कि किस तरीके से परिवर्तन की शुरुआत जो है उसमें संसाधनों की कमी किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं होती है, हम संसाधनों में भी हम बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आशा करते हैं श्रोता साथियों कि ये सभी बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagthara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तक ही करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात्काली ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आराज ने अपना वंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है बरसात का मौसम जो है उसमें हरियाली, ठंडी हवाएं और प्रकृति की सुंदरता, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है।
0: जी हाँ,
1: लेकिन श्रोता साथियों, यही जो मौसम है वो कई स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियों को भी साथ लेकर आता है। चाहे रोज काम पर जाना हो, खेतों पर पहुंचना हो, बच्चों का स्कूल हो या किसी रिश्तेदार की यात्रा, बारिश के दौरान थोड़ी सी लापरवाही हमें बीमार कर सकती है।
0: बिल्कुल,
1: आज कार्यक्रम में हम यही बातचीत करने वाले हैं कि बारिश के मौसम में यात्रा के दौरान हम अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखें।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है। तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले विषय से तो रूबरू करा ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं बारिश के मौसम में यात्रा के दौरान स्वास्थ्य का ध्यान हम कैसे रखें।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि वर्षा ऋतु में वातावरण में नमी अधिक होती है, इस कारण हम देखते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस और फफूंद तेजी से बढ़ते हैं। जगह जगह पर पानी भर जाने से मच्छर पनपने लगते हैं जो डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों को फैलाते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, यात्रा के दौरान बाहर का दूषित भोजन, खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थ, अस्वच्छ पानी और गीले कपड़े लंबे समय तक रहने से संक्रमण का खतरा है वो कहीं गुना बढ़ सकता है।
1: बिल्कुल
0: कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग जैसे कि श्रोता साथियों बच्चों और बुजुर्गों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि बारिश का मौसम वातावरण को ठंडा और सुहावना बना देता है, लेकिन इस समय नमी बढ़ने से जैसा कि बैक्टीरिया, वायरस और मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है। यात्रा के दौरान गीले कपड़े, गंदा पानी, अस्वच्छ भोजन और लंबे समय तक भीगना सर्दी, बुखार, पेट के संक्रमण और त्वचा संबंधित समस्याओं का कारण बन सकता है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए श्रोता साथियों यात्रा केवल सुरक्षित ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी सोच समझ कर करनी चाहिए। किसी भी यात्रा पर निकलने से पहले मौसम का अनुमान जरूर रखें। यदि बहुत तेज बारिश या बाढ़ की चेतावनी हो तो यात्रा टालना ही बेहतर होता है।
0: जी हाँ।
1: इसी के साथ अपने साथ हमें छाता और अच्छी गुणवत्ता का रेनकोट लेकर जाना है। पानी से बचाने वाला बैग और प्लास्टिक कवर हमें रखने हैं। अतिरिक्त सूखे कपड़े, तौलिया, पीने के लिए साफ पानी, हल्का और पौष्टिक नाश्ता, आवश्यक दवाइयाँ, सैनिटाइजर और साबुन, मच्छर भगाने वाली क्रीम, ये सारी चीजें हमारे पास में होनी ही चाहिए।
0: जी हाँ।
1: इसी के साथ श्रोता साथियों, बरसात में सबसे अधिक बीमारियां दूषित पानी से फैलती है। यात्रा के दौरान सड़क किनारे या खुले स्रोत का पानी पीने से बचें। यदि संभव हो तो घर से पानी की बोतल लेकर निकले और आवश्यकता पड़ने पर उबला हुआ या पैक बोतल वाला पानी ही हमें पीना चाहिए।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमें श्रोता साथियों बाहर का भोजन है वो सोच समझकर खाना है। यात्रा के दौरान सड़क के किनारे खुले में बिकने वाले कटे फल, चाट, गोलगप्पे, बासी भोजन और लंबे समय तक खुले खाद्य पदार्थों का सेवन हमें नहीं करना है। गर्म और ताजा भोजन श्रोता साथियों आप खाएं। फल खाने से पहले श्रोता साथियों अच्छी तरह से उसे धो लें। अधिक तला भुना भोजन पाचन को प्रभावित कर सकता है। घर से सूखे नाश्ते जैसे कि श्रोता साथियों भुना चना, मुरमुरा, ड्राई फ्रूट्स, मूंगफली और बिस्किट भी आप साथ में रख सकते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, यात्रा के दौरान खुले में बिकने वाले कटे फल, चाट, गोलगप्पे और लंबे समय से रखा भोजन खाने से हमें बचना है। इसकी जगह हमें घर का बना भोजन जैसा कि आपने बताया खाना चाहिए। इसी के साथ हमें फल जो है जिन्हें छील कर खाया जा सके वैसे ही खाने हैं।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों, ऐसा भोजन शरीर को ऊर्जा भी देता है और संक्रमण से बचाता है।
0: बिल्कुल,
1: यदि यात्रा के दौरान बारिश में हम भीग जाए तो जैसे ही अवसर मिले हमें गीले कपड़े बदल देने हैं। शरीर को अच्छी तरह सुखाना है, गर्म पेय पदार्थ लेने हैं, पैरों को सुखा कर रखना है और यदि जूते भीग गए हो तो उन्हें भी सुखाकर दोबारा पहनना है।
0: बिल्कुल,
1: लगातार गीले कपड़े पहनने से सर्दी, बुखार और फंगस संक्रमण हो सकता है। श्रोता साथियों, बरसात में सबसे ज्यादा परेशानी पैरों को होती है। लंबे समय तक गीले जूते न पहने, यदि संभव हो तो अतिरिक्त चप्पल अपने साथ रखें।
0: जी हाँ।
1: घर पहुँच कर पैरों को साबुन से धोएं, उंगलियों के बीच में अच्छी तरह से सुखाएं, इससे फंगस संक्रमण और खुजली से बचाव मिलता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बारिश के मौसम में यात्रा के दौरान हम हमारे स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें, इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले मनीषा हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात आती है कि बारिश के मौसम में जगह जगह पानी भर जाता है जिससे मच्छर तेजी से बढ़ते हैं।
1: हाँ।
0: यात्रा के दौरान हमें पूरी बाह के कपड़े पहनने चाहिए, मच्छर भगाने वाली क्रीम हम लगा सकते हैं और शाम के समय में विशेष सावधानी हमें रखनी है। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए यह बहुत जरूरी है। श्रोता साथियों, बच्चों और बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। उनकी यात्रा में समय पर भोजन, पर्याप्त पानी, सूखे कपड़े, आवश्यक दवाइयाँ और आराम का हमें ध्यान रखने की जरूरत है। यदि कोई गर्भवती महिला यात्रा कर रही है तो उसे डॉक्टर की सलाह लेकर ही यात्रा करनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: बहुत लंबी यात्रा से उन्हें बचना है, फिसलन वाली जगहों पर सावधानी रखनी है, पर्याप्त पानी और पौष्टिक भोजन लेते रहना है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर श्रोता साथियों को बताएं कि यात्रा के दौरान अपनाई जाने वाली कुछ आदतें हैं, जैसे कि हमें समय पर भोजन करना है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, गीले कपड़े श्रोता साथियों तुरंत हमें बदल देने हैं, खुले में बिकने वाले भोजन से हमें बचना है श्रोता साथियों, साथ ही हमारे हाथों की स्वच्छता हमें बनाए रखनी है। जैसा कि अंजलि जी आपने बताया कि पर्याप्त पानी भी हमारे श्रोता साथियों को पीना चाहिए। श्रोता साथियों, किसी भी बीमारी के कारण या लक्षण हमें दिखाई देने पर हमें डॉक्टर से सलाह लेनी है। साथ ही श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि बारिश का मौसम आनंद, ताजगी और प्रकृति की सुंदरता को लेकर आता है, लेकिन यह मौसम स्वास्थ्य संबंधित कई सारी चुनौतियां भी साथ लाता है। यात्रा के दौरान थोड़ी सी भी सावधानी श्रोता साथियों हमें अनेक बीमारियों से बचा सकती है, जैसे कि स्वच्छ पानी, ताजा भोजन करना, व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाए रखना, मच्छर से बचाव करना, गीले कपड़े तुरंत बदलना, पर्याप्त आराम करना, साथ ही श्रोता साथियों प्राथमिक उपचार सामग्री भी साथ रखनी है। ये सभी श्रोता साथियों छोटे छोटे कदम ही जो हमारी यात्रा को सुरक्षित और सुखद बना सकते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि गांव में कई बार कच्चे रास्ते और पानी भरे खेतों से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बिना जरूरत पानी में न उतरें, तेज हवा वाले पानी को पार करने का प्रयास न करें, बिजली के खंभों और टूटे तारों से दूर रहें, समूह में यात्रा करना अधिक सुरक्षित होता है। श्रोता साथियों, बारिश के दौरान जल्दी पहुंचने की जल्दबाजी कई दुर्घटनाओं का कारण बनती है। यात्रा करते समय धैर्य, वाहन धीरे चलाएं, मोबाइल का उपयोग करते हुए सड़क पार न करें, थकान महसूस हो तो थोड़ा विश्राम करें। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि बरसात में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रखना भी आवश्यक है। इसके लिए पर्याप्त नींद लें, मौसमी फल, हरी सब्जियां खाएं, हल्का व्यायाम करें, स्वच्छता बनाए रखें और अनावश्यक तनाव से बचें। यदि किसी रास्ते पर पानी भर गया हो और पुल क्षतिग्रस्त तो हो या कोई खतरा हो तो उसकी जानकारी दूसरों तक पहुंचाएं। सामूहिक जागरूकता कई लोगों की जान बचा सकती है। श्रोता साथियों, गांव में जल भराव रोकने, नालियों की सफाई और स्वच्छता बनाए रखने में सभी लोग मिलकर योगदान भी दे सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि आराम और पर्याप्त नींद भी जरूरी होती है। लंबी यात्रा है वो शरीर को थका देती है श्रोता साथियों, यदि पर्याप्त आराम न मिले तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए यात्रा के दौरान समय समय पर हमें विश्राम करना है और रात को अच्छी नींद लेनी है। हम देखते हैं कि थका हुआ शरीर संक्रमण का जल्दी शिकार हो जाता है, जबकि श्रोता साथियों पर्याप्त आराम शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है।
0: बिल्कुल मनीषा, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि बारिश का मौसम जीवन में नई ताजगी और खुशियाँ लेकर आता है, लेकिन सुरक्षित और स्वस्थ रहना हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है। यात्रा के दौरान छोटी छोटी सावधानियाँ रखकर हम कई बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए श्रोता साथियों कि सुरक्षित यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि स्वस्थ शरीर और सतर्क सोच के साथ घर लौटने का नाम भी है। जब हम स्वयं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं तो परिवार, समाज और पूरे समुदाय के लिए भी एक अच्छी मिसाल बनते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, इस बरसात में सावधानी को अपनी आदत बनाएं और हर यात्रा को सुरक्षित, स्वस्थ और सुखद बनाएं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदी है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे की पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
0: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है, हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: होवे जई वरे सब सोरा भणेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
2: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
0: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने अपने में देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
2: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
0: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
2: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
4: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट कशिश पारशर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हाजिर होते हैं तो आपसे हम बात करते हैं कुछ नए विषय को लेकर। आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसे ही प्रेरणादायक नए विषय को लेकर हम बात करने वाले हैं। साथियों, जैसा कि हम जो इंसान हैं वो जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हर किसी का ये सपना होता है कि वो अपने जीवन में कुछ ऐसा करे कि उसके घर के सभी सदस्य, माता पिता, समाज, आसपास के लोग सबको उस पर गर्व हो। कोई अच्छी नौकरी चाहता है तो कोई सफल व्यवसाय करना चाहता है साथियों, तो कोई ऐसे भी हैं जो अच्छा करियर बनाकर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर श्रोता साथियों ढेर सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, एक सवाल हम सबके मन में खड़ा रहता है कि अगर सपने इतने बड़े हैं तो हम उन्हें पूरा करने की दिशा में पहला कदम क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और वह पहला कदम है साथियों, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। जानेंगे साथियों कि कंफर्ट जोन से बाहर हम कैसे निकले और किस तरीके से हमने जो अपना एक सुरक्षित वातावरण बना रखा है उसमें हम दब कर रह रहे हैं। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है दोस्तों, तो इसी दस्तूर को निभाते हुए पहले सुनते हैं यहाँ पर एक प्यारा सा गीत, फिर आगे हम बातचीत फिर से करेंगे। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों विषय आप जान चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। साथियों, जैसा कि गीत से पहले भी मैंने आपको बताया था कि हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि वो अपने जीवन में सफल बने, कुछ नया करे, कुछ ऐसा करे कि उसके आसपास के लोग, उसके समाज में उसकी एक अलग छवि उभर कर आए। लेकिन कई बार ऐसा हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने सुरक्षित वातावरण यानी कि कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि कंफर्ट जोन वह जगह है जहां हमें कोई जोखिम नहीं उठाना पड़ता, किसी समस्या का सामना करना ही नहीं पड़ता है, जहां श्रोता साथियों सब कुछ हमारे हिसाब से होता है, जहां डर हमें कम लगता है और मेहनत भी थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। लेकिन श्रोता साथियों, यही सुविधा धीरे धीरे कब हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है हमें पता ही नहीं चलता। जैसा कि आज के जो हमारे युवा हैं, वो प्रतिभाशाली हैं, शिक्षित भी हैं और अवसरों से भी घिरे हुए हैं, फिर भी कई बार वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन की दीवारों को तोड़ने का साहस ही नहीं जुटा पाते। साथियों, हाँ, ये समस्या सभी के साथ है दोस्तों, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते और उसी कंफर्ट जोन के चक्रव्यूह में फंस कर रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको सच बताऊं तो कंफर्ट जोन से तो बाहर हमें निकलना ही होगा, क्योंकि अगर हम अपने सुरक्षित वातावरण से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो हम समस्याओं को झेलना कैसे सीखेंगे, उनका सामना करना कैसे सीखेंगे साथियों, और फिर उन समस्याओं का, उन संघर्षों का हल कैसे निकलेगा, और जो एक मेहनत की सच्ची सफलता होती है श्रोता साथियों, वो हमें कैसे मिलेगी। इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना तो बहुत जरूरी है। जैसे कि दोस्तों, कंफर्ट जोन जो है वो एक जगह नहीं है बल्कि एक मानसिक स्थिति है। साथियों, ये वो अवस्था होती है जहां हम वही काम करते हैं जो हमें आसान लगता है। नई चीजें सीखने, नए लोगों से मिलने, नई जिम्मेदारियां लेने या फिर असफलता का जोखिम उठाने से हम बचने लगते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है अगर इस सुविधा से ये हो जाएगा तो मैं वहां जाकर इतना पसीना और इतनी मेहनत क्यों करूं, हार्ड वर्क क्यों करूं जब स्मार्ट वर्क हो रहा है तो। लेकिन दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हर काम को स्मार्ट तरीके से ही किया जाए। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें मेहनत करनी होती है, संघर्ष करना होता है श्रोता साथियों। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, जोखिमों को उठाना होगा श्रोता साथियों, तभी हम अपने सही जीवन को जीना सीख पाएंगे। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम में मेरी आपसे बहुत अच्छी चल रही है, आगे भी ये बातें हम करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के बाद मैं फिर से रुक करना चाहूंगी कार्यक्रम सपनों की उड़ान की ओर। जैसा कि बातें हमारी गीत से पहले बहुत अच्छी चल रही थी और हम जान पाए थे कि ये कंफर्ट जोन का जो एरिया होता है वो होता क्या है और हम क्यों कंफर्ट जोन में ही रह रहे हैं। अब यही बात करते हैं श्रोता साथियों कि कंफर्ट जोन से बाहर न जाने के क्या कारण हो सकते हैं। साथियों, सबसे पहला तो ये है कि कई लोगों को असफलता का डर होता है, उन्हें ऐसा लगता है जिसके कारण वो किसी भी कार्य की शुरुआत नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर वो ये काम करेंगे तो वो असफल हो जाएंगे, फिर लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि सफलता उन्हीं को मिलती है दोस्तों जो असफल होने का साहस रखते हैं। और दूसरी बात ये साथियों कि कुछ लोगों को दूसरों की राय का डर भी होता है। जैसे कि दोस्तों, आज सोशल मीडिया के दौर में लोग अपने निर्णय से अधिक दूसरों की राय को महत्व देने लगे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो कह रहा है तो सही कह रहा होगा। कई युवा ऐसे हैं साथियों जो अपने सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ मजाक उड़ाने के डर से हम अपनी सफलता को क्यों छोड़ें, इस बारे में सोचिएगा दोस्तों। क्योंकि असफलता को अगर हम झेलेंगे, असफलता का हम अगर सामना करेंगे तो सफलता तो करीब आ ही जाएगी और एक ना एक दिन हम जरूर सफल हो पाएंगे श्रोता साथियों। साथ ही आपको बदलाव से घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा जो श्रोता साथियों स्वभाव है वो स्थिरता को ही पसंद करता है। नई जगह, नई जिम्मेदारियां, नई नौकरी, नई शुरुआत, इन सब में श्रोता साथियों अनिश्चितता होती है, इसलिए हमारा मन जो है वो पुराने रास्ते पर ही चलता रहता है। हम कुछ नया नहीं करना चाहते। कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा साथी श्रोता साथियों ये है कि कल से शुरुआत करेंगे। दोस्तों, ये जो कल है वो कई बार वर्षों तक नहीं आता। हमें लगता है कि ये काम है, हम उसे कल कर लेंगे, लेकिन वो कल का परसों हो जाता है, परसों का तरसों हो जाता है, तरसों का नरसों हो जाता है साथियों। तो ऐसे ही समय चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है और हमारा कल कभी आता ही नहीं है। इसलिए दोस्तों, जरा आप अपनी आदतों पर विचार कीजिएगा कि क्या कहीं आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं श्रोता साथियों कि आप भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। कहीं ये जो सारे डर है वो आपको भी तो नहीं है साथियों।

लेकिन फिर भी आप कुछ नया सीखिए, जैसे कि नई भाषा, नई तकनीक, नई किताबें पढ़िए और नया कौशल सीखिए। दोस्तों, सीखना कभी आप बंद न करें, क्योंकि कई लोगों को आपने देखा ही होगा कि जो ये बोलते हैं कि यार मेरी तो उम्र हो गई, अब मैं पढ़ के क्या करूँगा, या मैं अब मैदान में खेल नहीं सकता। श्रोता साथियों, ऐसी ढेर सारी बातें हैं जो हमें आसपास सुनने को मिलती है, या हमारे अंदर भी ये सारी बातें होती है। लेकिन हमें बदलाव की शुरुआत करनी है तो हमें अपनी सोच को भी बदलना होगा, अपनी आदतों को भी बदलना होगा। साथियों, आपको सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना होगा और छोटे छोटे जोखिम भी लेना आपको शुरू करना होगा। दोस्तों, याद रखिए कि बड़ा बदलाव एक दिन में तो नहीं आएगा, छोटे छोटे कदम आप बढ़ाएंगे तो आप एक न एक दिन अपनी सफलता तक, अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाएंगे। आप कोशिश करना मत छोड़िए साथियों, असफलता को शिक्षक मानकर चलिए। दोस्तों, अगर आप असफलता को अंत मानेंगे तो वो आपको कभी आगे बढ़ने देगी ही नहीं, लेकिन वहीं आप असफलता से कुछ नया सीखेंगे तो आपको नए नए अवसर मिलेंगे और फिर आप आगे भी बढ़ेंगे। दोस्तों, याद रखिए, गलतियाँ कमजोरी नहीं होती, गलतियाँ तो सबसे होती है, और ये जो गलतियाँ होती है वो सीखने का अवसर होती है। इसलिए गलतियों से डरिए मत, गलतियों का सामना कीजिए, उससे सीख लीजिए और आगे बढ़ते रहिए साथियों। साथ ही अपने जीवन में सकारात्मक लोगों के साथ बातचीत कीजिए, अपनी बातें उनसे साझा कीजिए और उनसे सलाह लीजिए साथियों। इससे होगा ये कि जैसी आपकी संगति होगी वैसी आपकी सोच होगी, और शायद हो सकता है कि आप उनकी बातों को सुनकर प्रभावित हो जाएं, या फिर आपको अंदर से उनकी बातें प्रोत्साहित करने लगे और आप खुद ही अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकल आए। तो दोस्तों, आपसे मैं यही कहना चाहूंगी कि कम्फर्ट जोन हमें कुछ समय के लिए सुरक्षित महसूस करा सकता है, लेकिन ये हमें हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। श्रोता साथियों, आपको याद रखना है कि जहां आपका डर समाप्त हो गया वहां से ही आपका विकास शुरू हो गया। साथियों, अगर जीवन में कुछ अलग करना आप चाहते हैं तो परिचित रास्तों से बाहर निकलना ही होगा। पहला कदम छोटा हो सकता है, लेकिन वही कदम भविष्य की सबसे बड़ी सफलता का नींव बनेगा। ऐसे में आइए हम सब मिलकर आज से ही संकल्प लेते हैं कि हम डर से नहीं अपने सपनों से संचालित होंगे। साथियों, हम चुनौतियों से भागेंगे नहीं, उनका सामना करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का साहस करता है ना दोस्तों, वही अपने जीवन की नई दिशा और नई पहचान बनाता है। याद रखिए दोस्तों कि सपने देखने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सपनों के लिए अपनी सुविधा छोड़कर आगे बढ़ने वाले बहुत ही कम लोग हैं, और वही लोग इतिहास रचते हैं। जी हाँ साथियों, तो इन्हीं बातों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, और बातें भी मेरी आपसे आज ढेर सारी रही साथियों। तो मैं विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाती हूँ यहाँ पर एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यही समाप्त होता है। जैसा कि आज इस कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातें की श्रोता साथियों, हमने देखा कि किस प्रकार से जब हम कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन वहीं जब हम अपने सुरक्षित वातावरण यानी कि कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं तो हमें बेचैनी से होने लगती है, हमें समस्याएं बड़ी लगने लगती है श्रोता साथियों। तो इसलिए इन समस्याओं से डरिए मत श्रोता साथियों, बल्कि इनका सामना कीजिए और एक सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिए। इन्हीं उम्मीदों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली में जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जई वरे अधिकार हमरा अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनों हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
1: भाई ने बोनो आप इकारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह या आपड़े नी कितनी शांति मिले है जीनी हवा में आपड़े हाल रह ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो होवे आज नाना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
0: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है
3: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा
4: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर
0: हिंडो स्कूल जा आपड़े अपना भी अपना पूरा करो
3: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है
4: होवे जय वरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा
3: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसार

भाई बोनो, घर तकी निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

ये गजल मैंने मेरे से बहुत दिनों में इसकी धुन बनी मैं पेश कर रहा हूँ। ये मोमिन खां मोमिन की गजल है जिसका मतलब है रोया करेंगे आप भी पहरों इसी तरह अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह।

0: भाई न बोनो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: तो साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को। नमस्कार।